लेने आउचे बदे चे बदल तैयारी वाले ची उसको ही पसर बदी दड़ी आउनु करे खेल साथी नुस्तासु खेल बस साथी आउंगे कि जमुंगा वरा गिरे दा बाबी गाने वरंदारे नेडे खुशी गुजारम गई खा जा पतीला मतीला बमूली अच्छा जी यार लाल चीज मां डेर जाता बेस्ट फ्रेंड अमल दमा सिर्फ पहाड़ से की भी आके जी डेर जाता मने ने गुल शुक्रिया अटांग से नरगस हसाम भाई सलाम हमारी एक आवाज इस ना प्रोडक्ट जिंदाबाद जहुद हर वक्त यादों में अतमे जहुदी हर वक्त यादों में तमीने यादवे और जमुंग हाजरी उलगवा नरगस फ्राम टांग थैंक यू सो मच जी रिजाता मने ने जी शुक्रिया और सलाम खालिद फ्राम शाही आबाद टांग वालेकुम असलाम थैंक यू सो मच जी असलाम इमरान मरवत डिस्ट्रिक्ट टांग से विलेज खैबर से थैंक यू सो मच वालेकुम असलाम मुसाद वानी नसर आखिर के दे सिंगर सरदार अली टकर सॉन्ग प्ले का ओके जी कोशिश पकोमा डेर जाता मने ने शुक्रिया गुल जमान सिब मुसरबल में से चिकम दे आसिफ नजीर गुल टांग रूडी खेल जबरदस्त प्रोग्राम डेर जाता मने ने जी शुक्रिया पाकिस्तान प्रोडक्ट पटांग की पकार हुई शिकार के पटांग की जमुंग चिकम डिस्ट्रीब्यूशन दे टूल नमक के आगा चिकम जमुंगा द जरबत खान अजी से सर दे चाहते द कूर द पारा या चिकम दे दुकान द पारा दगा प्रोडक्ट पकार हुई मंसूर जनरल स्टोर टांग तिकम दे तासु अर्थलेश हाजी जरबत खान अजी से तासु यादवलेश और मुजीब सेफ हम आगे की मौजूद हुई नुक चाहता हम पकार हुई जमुंग होल सेल वाणी जमुंग प्रोडक्ट तो टांग की बचता चिकम दे दगजी की मिलावेगी मंसूर जनरल स्टोर और हाजी जरबत खान से तासु जानसर बिल्कुल जी या साथ खा।

देने अलावा चिकम दे कता सुता फरीदुल्ला जनरल स्टोर बिलाल मार्केट बनुरू टांग के बमिला विगी जी अलबदर मार्केट अफसर खान प्लाजा सदर प्लाजा डबरा बाजार के बताओ चिकम दे पर अजहर जनरल स्टोर मेन बाजार टांग जी सेहत उम्मीद मेडिकल अस्पताल नूर मार्केट टांग सिटी वकास ट्रेडर तगजड़ा सब्जी मंडी टांग जहांजीब ट्रेडर उमर अडा टांग इब्राहिम सोलर एंड ब्यूटी सिस्टम निजी सलीम मिस्त्री डबरा जमन खूगरूर दिस लाजिमी मीनवर के खजी अजियाउर रहमान कॉस्मेटिक्स स्टोर एंड साबिर कॉस्मेटिक स्टोर चिकम दे कॉस्मेटिक स्टोर शेख अवतारू डबर बाजार अनूर खान जनरल स्टोर पी साहिब कादरी मार्केट डबरा रोहेल लेडी शॉपिंग सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर दो पठानकोट गनी रहमान दुकानदार मंजिकली मुलाजिम परदेसी दुकानदार निधि सुहेल मदरसा रनवाल किली टांग अताज मोहम्मद दुकानदार उर्फी काकिरी सररेजी किली सरनिजदी गुमल इलाका मतीउल्ला दुकानदार सिगड़ा के प्राइमरी स्कूल हाफिज अब्दुल रहीम मिस्त्री दुकानदार जीउस बाजार मीरली लुलू शॉपिंग सेंटर मलिक तारिक मार्केट ड्रीम दुकान नंबर की बताओ कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट्स मिलावेगी तो कहते यो हर्बल प्रोडक्ट वाली गुलागानो प्रोडक्ट वाली हाइस्तुनो प्रोडक्ट वाली और स्किन में खराब नहीं स्किन में खुशी नो तासर पदी वकी पे टांग वाना डबर हर जे की यो ऑप्शन मौजूद दी अगर इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दे कहते माता हकीकी मानो की रिजल्ट मिलाओशी माता हकीकी मानो की चिकम दे खाइस्तुनो मिलाओशी तो ताता मिलावेगी सिर्फ और सिर्फ इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के।

बिल्कुल तासो रहमतुल्ला और फरमाइश बानी सलीम अरवत पावाज बानी टफे और दे बिल्कुल अगे नबाद मुश्ता बबरक रोर फरमाइश कड़ा खागो गाना चिका मदा फिलहाल मातला मिलाओ न दा अगे नबाद मुश्ता गुल उस्ताद दे वहीद गुल उस्ताद पर आवाज बंदे दे टपो और दलो फरमाइश कड़ा न बिल्कुल राजो दे वहीद गुल उस्ताद पर आवाज बंदे दे गुल उस्ताद पर फरमाइश बंदा टपेर सरवा और तासो बचेरे न जो मा सरा बोस

0: मिर्चें, मिसाले और ये तेल वाली चीजें, तो ये चीजें जब खाएंगे तो फिर उनकी जिल्द पे उसका असर तो आना है,
1: जाहिर सी बात है।
0: फिर वो दाने निकलेंगे। आजकल लड़के हैं खासकर स्कूल के या कॉलेज, वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं यार हमारे चेहरे पे दाने निकल आए, मुस्तकिल निकल रहे हैं,
1: मुस्तकिल निकल
0: तो फिर। लेकिन जब उनसे इस बारे में बात हो कि यार आपके खुराक क्या है, तो खुराक में ज्यादातर वो समोसे पकौड़े और ये चीजें बाजारी हैं, तो वो शवारमा खा लिया जी हमने, ये खा लिया, तो ये चीजें थोड़ा सा नुकसान करती हैं। और फिर
1: जी सॉरी,
0: उसमें आप सहारा लेते हैं मेडिसिन का या इस चीजों का कि जो उसको रिमूव करें, लेकिन वो उल्टा और असरात दे जाती हैं। हाँ, देसी अद्वियात में ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाए बगैर आपको एक तरफ से राहत भी देती हैं और उस मर्ज से आपकी जान भी छुड़ाती हैं।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: आप नेचुरल के जो है, नेचर के करीब आए, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें, तो उसमें फिर रिजल्ट जो है वो आपकी मंशा के मुताबिक आ जाता है।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ,
0: छाइयां क्योंकि मेन किरदार अदा करती हैं, बाजे छाइयां आ जाती हैं, वो छाइयों की वजह से परेशान हो जाते हैं।
1: हाँ जी,
0: लेकिन वो ये नहीं देखते कि बाज दफा हम लोग अपना ज्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं, या कह लें कि सूरज की रोशनी में गुजारते हैं या धूप में गुजारते हैं,
1: काम करते हैं,
0: तो उसमें फिर हमारी जिल्द पे असर अंदाज होती है सूरज की रे, और उससे भी छाइयां। और बाज़ का ज्यादातर जो है वो आर्टिफिशियल जो केमिकल्स हैं,
1: ठीक है,
0: इनसे भी छाइयां आ रही हैं। फिर उसमें हमारी खुराक का भी अमल दखल है।
1: अच्छा, खुराक का तो हकीम साहब बड़ा अमल दखल होगा ना,
0: खुराक ज्यादा है, क्योंकि हमने खानी वही चीजें हैं ना, कि हम सिर्फ जबान के जायके को देख रहे होते हैं।
1: ऐसी बात
0: कि यार हमें कुछ चटपटी सी चीज मिले कोई, तो लेकिन वो जो मिसाले आ रहे हैं वो भी इस तरीके के नहीं आ रहे कि आप उस पे कह सके कि यार ये बिल्कुल क्लियर हैं या प्योर सही हैं। उसमें भी आजकल केमिकल है, फिर उसके अलावा जो चीजें आ रही हैं वो भी हैं, तो उनका रिएक्शन तो आना ही है।
1: वो तो आना ही है ना,
0: सब्जियां हैं तो वो भी फार्मी, तो ये चीजें सारी मिलके जब जिल्द पे असरअंदाज होंगी तो उसका रिएक्शन फिर इसी सूरत में आएगा कि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ सकती हैं, छाइयां आ सकती हैं, दाने आ सकते हैं, पिंपल आ सकते हैं। और इसी चीज को देखने के लिए कि आप उसमें क्या क्या डिसाइड करते हैं, तो आपको एक मुस्तनद मुआलिज से मिलना पड़ता है, ताकि वो आपकी जिल्द के मुताबिक आपको मशवरा दे सके।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने बात की मुर्गी के, फार्मी मुर्गी के बारे में
0: जी,
1: तो हम बाजारों में देखते हैं मतलब कि सफेद मुर्गियां जो हैं
0: जी जी,
1: जिनको बेलर कहते हैं या ब्लिडर कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं, सो वो हकीम साहब खुद खड़ी नहीं हो सकती,
0: ऐसा ही है,
1: और हम वो चीज खाते हैं, तो ये बताइएगा कि फार्मी मुर्गी जो है रेगुलर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हकीम साहब, बल्कि आजकल हर जगह
0: पूरे मुल्क में बहुत ऐसी बात है, इस्तेमाल हो रही है,
1: तो इसका कोई नुकसान है हकीम साहब?
0: इसका अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान है। उसकी वजह है कि वो ये बात ठीक है, और एक दो दफा दुकानदारों से इस पे बहस भी हुई है कि वो उस पे पानी के छीटे मार रहे हैं।
1: हाँ, ये
0: यार ये थोड़ा सा फ्रेश हो, तो वो मैं कि इसको पानी डाल के इसको उठा रहा है कि यार खड़ी हो जा, गाहक आ गया तेरी मेहरबानी। मैं कि यार ये बीमार है, उससे खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और उसी का गोश्त हम खा रहे हैं,
1: जाहिर सी बात है, और बड़ी शौक से,
0: और शौक से। और दूसरा ये है कि जरा ये महंगी हो जाए तो लोग किलोओं के हिसाब से लेना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं शॉर्ट हो रही है, पता नहीं क्या,
1: ऐसी बात है, ऐसी बात।
0: हालांकि इसके मुकाबले में अगर हम बड़े गोश्त को लें, स्पेशली कट्टे के गोश्त को, तो वो ज्यादा बेहतर है।
1: अच्छा, कट्टे यानी गाय का गोश्त है, भैंस का गोश्त है, वो खाएं वो बेहतर है।
0: देखिए बिल्कुल, गाय का दूध जो है वो एक नंबर है गजाइयत में,
1: ठीक है,
0: माँ के बाद अगर कहते हैं कि नेमुल बदल है
1: तो वो गाय का दूध ठीक हो गया,
0: ठीक है। लेकिन गाय का और भैंस का गोश्त जो है ये उतना सूटेबल नहीं है,
1: ठीक है,
0: ये जूद हजम नहीं है, देर हजम है, कब्ज करता है, हवा जिसम में री हवा पैदा करता है, और इसी तरह ये शेवर मुर्गी का है,
1: ठीक है। ये भी रेगुलर नहीं खानी चाहिए हकीम साहब?
0: नहीं, रेगुलर नहीं,
1: बड़ा गोश्त,
0: बड़ा गोश्त अगर आप खाते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आप सब्जी का इजाफा करेंगे।
1: अच्छा, आप किसी सब्जी में डाल
0: किसी सब्जी में डाल लें, टिंडे, घिया, कद्दू, तोरी, करेले, कुछ भी डालें।
1: अच्छा, हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं?
0: बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन जब आप एक तो सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके बादीपन को खत्म करते हैं और दूसरा इसकी तबीयत को मुतदिल करते हैं।
1: अच्छा हकीम साहब, किसी हकीम के पास जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए, तो सबसे पहले वो आपको बड़ा गोश्त ही मना करेगा
0: वो इसी
1: परहेज में?
0: हाँ बिल्कुल, उसकी वजह है कि ये गोश्त थोड़ा सा देर हजम होता है, बादी पैदा करता है,
1: ऐसी बात है।
0: और दूसरी बात यह है कि हम लोग फिर उस तरीके का उससे तैयार भी नहीं ना करते, हम लोग मिर्चे मिसालों की ज्यादती करते हैं, लेकिन जो चीज उसमें चाहिए अदरक वगैरह और ये सारी चीजें जो उसकी री को खारिज बदले उसकी बादी की तबीयत को, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं।
1: अच्छा हकीम साहब, मतलब इसका यही हुआ कि अगर एक इंसान के अंदर पांच बीमारियां हैं
0: जी,
1: तो वो पांचों मैदे की वजह से भी हो सकती हैं?
0: बिल्कुल हो सकती हैं। मैदा अच्छा। तो आपका मेन है ना, मेजर किरदार जो बॉडी में है वो आपका मैदा ही है।
1: ऐसी बात है, हाँ जी, हाँ जी,
0: उसकी बेस पे आप चल रहे हैं, आपके वजूद की ग्रोथ है, आपकी सेहत है, वो सारी आपकी मैदे की वजह से।
1: अच्छा, वो मैदे की वजह से ही है?
0: आपके चेहरे की ग्लो है, आपके चेहरे पे रौनक है, वो आपके मैदे की वजह से।
1: अगर आपका मैदा दुरुस्त नहीं है तो आप भी दुरुस्त नहीं होंगे। ऐसी बात है, आपके मैदे का भी मसला होगा, आपके चेहरे की रौनक भी नहीं होगी।
0: ऐसा ही है।
1: अच्छा, तो
0: आपकी हिज्जत बढ़ेगी।
1: ऐसी बात है। तो हकीम साहब, अगर एक बंदा अपने मैदे का इलाज आपसे करा लेता है
0: जी,
1: ठीक है, तो वो मतलब आधे से ज्यादा मसले तो उसके हल हो जाएंगे।
0: देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि मैदा जो है वो मेन एक किस्म का कह ले कि हाँ, जिस तरह हम घर में दाखिल होने के लिए मेन डोर का इस्तेमाल करते हैं कि मेन दरवाजा है,
1: ऐसी बात है,
0: हम जाएंगे, तो मैदा जो है ये भी बॉडी का मेन एंट्रेंस है,
1: मेन एंट्रेंस है। ऐसी बात है।
0: इसके लिए सबसे पहले इसका ठीक होना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: इसने ही आगे वजूद के जो हिस्से हैं उनको इसने उनका मतलूबा जो उनका हिस्सा है वो उनको देना होता है, यानी उनको गजाइयत देनी होती है,
1: ऐसी बात है,
0: ताकि वो ग्रोथ करें, वो बेहतर हो, और उसके बाद जो बचता है वो फुजले की शक्ल में, स्टूल की शक्ल में जिसमें से खारिज हो जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी बात है।
0: अब मैदा अगर आपका ठीक है तो फिर तो आपको इतने मसले नहीं बनते, लेकिन अगर आपके मैदे में तेजाबियत, गर्मी, चाहे वो खुराक की वजह से है, चाहे वो आपके पानी कम इस्तेमाल की वजह से है, या कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीजें जो आर्टिफिशियल हैं या कह लें बाजारी हैं, और ये चीजें जब बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होंगी
1: ठीक हो गया,
0: तो वो फिर इसमें तसाबियत करेंगी, गर्मी करेंगी, और मैदे में गर्मी होगी तो आपके वजूद में हिद्दत होगी।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: उसका असर फिर आपकी पूरी बॉडी पे आएगा,
1: स्पेशली
0: खासकर आपके चेहरे पे जाहिर होगा, और इसीलिए मैदा तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है,
1: जरूरी है।
0: और इसलिए कहते हैं कि मैदा दुरुस्त तो इंसान
1: तंदुरुस्त, ऐसी बात है।
0: मैदे ही से आगे काम सारा चलता है, तो इसी वजह से ये पिंपल और ये दाने और ये चीजें सारी हैं, तो
1: है।
0: कोशिश कीजिए कि आप अपने मैदे की इसलाह करें ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े कि चेहरे पे दाने बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि उसमें से मुआद भी खारिज हो रहा है, उसमें सोजिश है, दर्द है, वरम है, तो उसके लिए फिर आपको सबसे पहले अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी देसी टोटका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि वो आपके लिए बिगाड़ पैदा करेगा, हो सकता है कि वो आपको राहत दे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप एक दफा मशवरा जरूर कर
1: चले, ठीक है,
0: फिर आप अपनी जल्द का भी
1: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल ख़वातीन व हज़रात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, सेहत का पैगाम आप समाअत फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। सो समीन इकराम, हकीम साहब ने आज बात की आपके चेहरे के बारे में, वो बहनें, वो भाई जिनके चेहरे पर कील हैं, मुहासे हैं, छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, छोटे छोटे दाने हैं, तो जनाब इंशाल्लाह आपके चेहरे पर जो मसाइल हैं बगैर केमिकल के इंशाल्लाह आपका इलाज किया जाएगा अलशिफा दवाखाने में देसी तरीका इलाज से। जिस बहन का भाई का चेहरे के हवाले से मसला है, अपना देसी तरीका इलाज कराएं ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना झेलना पड़े, आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि आपकी जिल्द बड़ी नाजुक है, क्योंकि अगर आपकी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 18 साल या 20 साल तक है, तो आपकी जिल्द बड़ी नाजुक है। अपनी जिल्द को केमिकल अशिया से बचाएं और देसी तरीके इलाज की तरफ आएं। इंशाल्लाह हकीम साहब कल मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में। سو بالکل آپ کی بہت سارے کالز آئیں لیکن ہم پک نہیں کر سکے. سو ابھی جس بھائی بہن کا صحت کے حوالے سے سوال ہے, اپنے بھائی سے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر اور 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرے بھائی ریڈیو کو ساتھ بند کریں.
2: بند کر لیا
1: جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: میں نیاز بات کر رہا ہوں
1: جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: سے بات کر رہا ہوں
1: جی. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
1: جی جی بولیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
2: حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بہت
1: ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی, آپ ریڈیو سنیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ بھائی؟
0: ان کے معدے میں تیزابیت بھی ہے.
1: ہاں جی.
0: اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنے ٹیسٹ کرا لیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتے میں پتھری بن رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بعض دفعہ صورتحال ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں. اور ویسے عموماً زیادہ تر یہی ہے کہ میدے میں تیزابیت کی وجہ ہوتی ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: اگر اس میں آپ محسوس کرتے ہیں جلن یا درد زیادہ ہے تو آپ کچھ وقت نکال کے
1: دواخانے
0: پہ آ جائیں تاکہ آپ کی نبض وغیرہ بھی, آپ کی کیس ہسٹری بھی, آپ کی باڈی سب دیکھ کے اس کے مطابق آپ مشورہ دیا جا سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد تفصیلاً کال کر لیں,
1: ایسی بات
0: ہے, تفصیل میں آپ سے لے کے تو آپ کو اس کا حل بتا.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل آپ میرے پیارے بھائی تشریف لے آئیں الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں. السلام علیکم. تو جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. سو سامعین اکرام, صحت کا پیغام آج سماج فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک کل موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام
1: ورحمۃ اللہ. شکر ہے میرے بھرا. کون دے کتوں گال کریں دے پے؟ جی روشن صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں؟ ٹھیک
2: ہے.
1: ہاں جی بالکل, چہرے دے بارے چاہتا موضوع ہے پیا. اچھا سوچ بھی کم ہو جائے. ٹھیک ہے روشن بھائی, ریڈیو سنتے رہیں اور اپنے دوست کو بھی کہیں کہ وہ بھی سنتے رہے, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, شہد کی مکھی نے بھائی کو کاٹ لیا ہے, کہتی ہیں اب جلن بھی کم ہو جائے اور سوجن بھی کم ہو جائے, تو ایسی کیا چیز جو ہے نا موقع پر استعمال کریں؟
0: آپ اگر خالص شہد ہے وہ بھی استعمال ہو گیا, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے گھر میں یا اسپرٹ پڑی ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: آپ اسپرٹ بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جلن کم ہو جائے گی.
1: ٹھیک ہے. اور سوجن حکیم صاحب؟
0: سوج اتر جاتی ہے کچھ ٹائم بعد اس کی خود بخود. ہاں بہت زیادہ مکھیاں یا اکٹھی کاٹیں
1: ٹھیک ہے,
0: پھر تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی جو ہے میڈیسن فوری طور پہ لینی پڑتی ہے, لیکن اگر ایک آدھ مکھی نے کاٹا ہے تو کچھ دیر بعد اس کی سوج اتر جائے گی.
1: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ ان شاء اللہ حکیم سے بس ہوا موجود بھی کلینک مندے سوا مل 8 بجے نوالا دا مقام سلور بجے پورے.
3: ہلو
1: جی جی حکیم صاحب, ان شاء اللہ سبا موجود بھی اخبار کلینک کے. ہاں ہاں ان شاء اللہ ساسو راش ان شاء اللہ ساسو کما مسئلہ ہوا بحال شی.
3: چلو
1: بالکل راوڑے ان شاء اللہ حکیم صاحب موجود بھی. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, پیارے بھائی نے کل پہاڑ پور سے کال کی تھی اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے, میرے دو تین پیشنٹ ہیں ان کو لانا ہے حکیم صاحب کے پاس پہاڑ پور سے. حکیم صاحب آپ خود بھی بتا دیجئے کہ آپ کل موجود ہوں گے.
0: میں صبح انشاءاللہ 8 بجے سے 4 بجے تک جو روٹین ہے دواخانے کی اس کے مطابق میں اپنے کلینک پہ ہی ہوں گا
1: انشاءاللہ,
0: تو آپ بالکل آ سکتے ہیں اور
1: اپنا چیک اپ کرا سکتے ہیں
0: بالکل, اور اس کے بعد جو بہتر ہوا وہی مشورہ. دیکھیں بعض اوقات ہمارے کنسپٹ یہ بھی ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم دواخانے پہ جاتے ہیں تو ہمیں لازمی دوائی بھی لینی,
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: لیکن میں ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, یہ ایک پروگرام جو ہے یہ اویئرنیس کے لیے ہے, آگاہی کے لیے,
1: پیغام دینے کے لیے.
0: آپ کو ایک پیغام دینا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے سے دو چار ہیں,
1: بالکل ایسی بات ہے,
0: یہ لازمی نہیں کہ آپ اس کا علاج کرانے چل پڑے,
1: ایسی بات ہے. ہاں جی,
0: آپ صرف آ کے اس پہ مشورہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کا دل کرتا ہے, آپ کو کوئی بات دل پہ لگتی ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: اور پھر آپ اس کے علاج کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں,
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: ادروائز آپ صرف مشورہ کر سکتے ہیں, اپنے بارے میں جان سکتے ہیں کہ میں کون سا لاہ عمل ایسا اختیار کروں,
1: ٹھیک ہے,
0: کہ جس سے میں کم از کم اپنی روٹین میں, اپنے مرض میں کوئی تبدیلی لا سکوں. تو میری صرف یہی اپنے لسنر سے ہے کہ آپ یہ چیز نہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے وہاں جا کے دوائی خریدنی ہے, کیونکہ آپ پیسے سے علاج تو خرید سکتے ہیں لیکن پیسوں سے شفا نہیں لے سکتے.
1: ایسی بات ہے, شفا
0: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور وہ کہاں سے ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے.
1: بالکل,
0: آپ صرف اپنے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں, اور اگر میں اپنے میں ایک قسم کا فخری محسوس ہوگا اگر میں آپ کو کوئی ایسا مشورہ دیتا ہوں یا کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیتا ہوں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو, تو اس میں مجھے اپنے علم پہ فخر ہوگا. تو اس لیے آپ اس چیز کو ذہن میں نہ رکھیں, آپ مشورہ ضرور کریں, ملیں ضرور, اس کے بارے میں جانیں تاکہ آگے سے آپ کسی دوسرے کو بھی آگاہی دے سکیں.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو سامعین, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جناب ساسو چیر مسئلہ بھی دا صحت حوالے سر ساسو بالکل تشریف راوڑ لسو دا الشفا دواخانے تھا, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے بحکیم صاحب صبا و موجود بھی صبح مل 8 بجے نوالا تمخام سلور بجے پورے او مریضانو چکا پائنا بازار ساتھی کساسو چیرے صحتہ والے سر سوال بھی بالکل ساسو دے پروگرام کے ہم کال قبل سو 0963-511-488 بندے او 0319-55-23-404 ہم ساسو کال قبل سو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو جی, تو پیارے بھائی آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. سو جناب پروگرام صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا چاہتا ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اپنے معزز حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو 0319-55-23-404 پر کال ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور 0963-511-488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی بھائی آپ کی آواز ہی بالکل نہیں آ رہی ہے. سو جناب آپ جو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے اس پر آپ کال کریں 0319-55-23-404 پر آپ حکیم صاحب سے کال کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں, اور حکیم صاحب کل اپنے کلینک پر موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, حکیم صاحب سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے, کوئی ٹوٹکا پوچھنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں, 0319-55-23-404 پر کال ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ 0963-511-488 پر یعنی 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک میسج ہے حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ السلام علیکم حکیم صاحب, ایک وانا سے مہندی آتی ہے, उन्होंने नाम भी लिखा हुआ, तो वो हम नहीं ले सकते। कहते हैं कि वो बालों के लिए कैसी है। तो प्यारे भाई, अब हकीम साहब ने इस्तेमाल नहीं की है, तो जी हकीम साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
0: देखिए, मेहंदी अब उसके अज्जा क्या हैं इस बारे में नहीं कहा जा सकता।
1: अच्छा हकीम साहब, ये जिन मेहंदी के बारे में बात कर रही हैं या कर रही हैं ना, तो ये बेसिकली जो है ये काली मेहंदी है, यानी कि बालों को काला करने वाली। कॉलर है हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सरंगा जी।
1: अच्छा रंगयो जी, खैर खरीत दस्ता तबियत शद जी।
3: प्रोग्राम का दा नंबर सही था?
1: हाँ बिल्कुल जी, दा सही नंबर दस्ता हकीम साहब प्रोग्राम की कॉल करे था।
3: अच्छा
1: खड़ा पई बिल्कुल बिल्कुल जी, सब से कम रखड़ा से दसुम रहा उम्र जो काल हो दे धाकड़ा से दर्द चो काल हो दे चोर उम्र दे देवाल बारह काल था सही दे जी। रेडियो वर वही हकीम साहब सर अजय बारे की मुशफरक को ओके सर सना बीरा मनना जी। हकीम साहब भाई पता कर रहे हैं, उनका बेटा है 12 साल का और रात को नींद में जो है ना वो दांतों को आपस में जो है ना कड़पाता है, मतलब कि रगड़ता है आपस में, तो इसकी क्या वजह है?
0: इसकी वजह इसके पेट में कीड़े हो सकते हैं।
1: पेट में कीड़े हो सकते हैं, ठीक हो गया।
0: इसके पेट में कीड़े हैं और हो सकता है अब अगर ये दोबारा कॉल करें
1: ठीक है,
0: तो ये भी पूछ लीजिएगा कि आया बच्चा जिस्मानी लिहाज से कमजोर है,
1: ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं।
0: उसमें इसके पेट में कीड़े हैं और इसी लिहाज से बाज दफा दांत रगड़ते हैं। तो अब चीज ये है कि आप उसका अगर तो शहर में है यानी टाउन में सिटी में है
1: ठीक है,
0: तो आप बेटे के साथ आ सकते हैं दवाखाने पे और उसके मुताबिक फिर देख के और बच्चे की सेहत देख के तो ज्यादा क्लियर बेहतर सूरत हाल सामने आ जाए।
1: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रोड द रेडियो दर सर बांध का। हेलो जी, मेरे भाई जो भी आप कॉल करते हैं तो मेहरबानी करके या रेडियो से दूर हो गया करें या जो है ना आप रेडियो बंद कर दिया करें, क्योंकि ये शो में बहुत कीमती वक्त होता है हमारे पास जो कि डिस्टर्ब होता है। तो जनाब, आपका सेहत के हवाले से ये प्रोग्राम है, इसके बारे में हम सेहत के बारे में ही बात किया करते हैं इस प्रोग्राम में। देखिए, कोई ऐसा परेशान बंदा होगा, कोई ऐसी बहन होगी, कोई ऐसा भाई होगा जो कि सेहत के हवाले से बड़ा परेशान होगा, हमें कॉल करने की कोशिश कर रहा होगा। सो जनाब, आपका कोई भी सवाल है सेहत के हवाले से, आप अपने भाई से पूछ सकते हैं, मैं हकीम साहब से पता करके आपको बताऊंगा, हकीम साहब आपको खुद भी बताएंगे। आप हकीम साहब से खुद बात करना चाहते हैं फिर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। हकीम साहब कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप पाना जारी रहेगा। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब रोजाना मौजूद होते हैं अपने क्लिनिक में और रोजाना की तरह कल भी मौजूद होंगे और मरीजों का जो चेकअप पाना है वो जारी रखेंगे। हकीम साहब, ये बताइएगा आज जरा सा चावल के बारे में हमें बताइए कि नमकीन चावल है हो या मीठे चावल हो, इसके बारे में हमें बताइए कि ये इस्तेमाल करना खाना कैसा है हकीम साहब?
0: बहुत जबरदस्त है, ठीक है, मेरी अपनी फेवरेट डिश है, लेकिन नमकीन चावल।
1: नमकीन या मीठे हकीम साहब?
0: नमकीन।
1: अच्छा, नमकीन।
0: नमकीन चावल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: ऐसी बात है।
0: हाँ, बाकी ये है कि आप मीठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावलों की ज्यादती जो है,
1: ऐसी बात है,
0: वो ठीक नहीं है ज्यादा।
1: ठीक है,
0: आप हफ्ते में एक आध दफा बना सकते हैं अपनी मेन्यू में अगर रखें तो चावल। और दूसरा ये है कि इसका नुकसान तो कम से कम कोई नहीं है।
1: अच्छा, इसका नुकसान नहीं है कोई?
0: लाइट से खुराक है, लेकिन जब हम इसको और ज्यादा मसाले डाल के और उसको बिरयानी की तरफ ले जाते हैं या मुख्तलिफ डिशेज, फिर थोड़ा सा यह है कि वो हमारे मैदे पे बोझ बनाते हैं, बाज दफा तबीयत में वो पैदा करते हैं। लेकिन आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी ज्यादती जो है वो सही नहीं है।
1: ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि आजकल हर नौजवान इस मसले में मुब्तला है, यानी कि डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन दूर करने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए हमें?
0: इस पे पीछे हमारा प्रोग्राम रहा है, तफसीलन स्ट्रेस का, एंजाइटी,
1: टेंशन, डिप्रेशन के बारे में,
0: टेंशन का। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन है, हमें कम से कम उस पे नजर मारनी होती है,
1: ऐसी बात
0: कि
1: है।
0: हमारे जो मामलात हैं वो कैसे हैं, किस तरह हैं, उसमें आपकी इबादत भी आ जाती है, आपकी खुराक भी आ जाती है, आपका रहन सहन भी आ जाता है, आपका लोगों से मिलना जुलना भी आ जाता है।
1: ठीक है,
0: तो जब आप मुस्बत तरीका अपनाते हैं तो फिर आप कामयाब भी रहते हैं।
1: चलें, ठीक है हकीम साहब, नशे के बारे में अगर हम बात करें, नशा आपको पता है कि ज्यादा हो गया आजकल।
0: बिल्कुल है, बिल्कुल,
1: चाहे वो जिस किस्म का भी नशा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो ये बताइएगा कि हकीम साहब क्या नशे का इलाज आपके पास है?
0: देखिए, बात ऐसी हैं चीजें कि जिनके लिए दवाखाना भी अभी
1: ठीक है
0: उस तरह पेशेंट को डील नहीं करता। हाँ, हमें मशवरा दिया जा सकता है।
1: ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट आपके पास ले आए हकीम साहब नशे का, यानी कि एक तो बड़ा हाई लेवल का चला जाता है ना, अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है या नस्वार की आदत है, तो क्या ये छूट सकती है?
0: हाँ, बिल्कुल उसके लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो मुतासरा शख्स है उसकी कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद अपने आप में एतमाद पैदा नहीं करेगा और अपने आप में छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा,
1: ठीक है, हाँ,
0: तो फिर कोई मेडिसिन भी वहाँ काम नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि वो उसको यकदम ना छोड़े, और यकदम छोड़ी भी नहीं जाती, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं रफ्तार रफ्तार रफ्तार, तो आप उससे अपने आप को आजाद कर सकते हैं।
1: ठीक है हकीम साहब, एक और सवाल है, ये बताइएगा कि सिगरेट पीने से क्या फालिज हो सकता है?
0: सिगरेट पीने से
1: काफी बार सुना है हकीम साहब,
0: देखिये बाज दफा होता है कि जिसम में आपके तब्दीलियां जरूर आती हैं,
1: ऐसी बात है,
0: और कुछ बॉडी में ऐसी तब्दीलियां तो वो उस तरफ आपको ले जा सकती हैं।
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: अच्छा,
0: लेकिन कोशिश करें कि आप सिगरेट का इस्तेमाल कम से कम करें, वरना और कुछ होना हो आप दमे के जरूर मरीज बन जाते हैं,
1: ये तो लाजमी है,
0: और फिर आप किसी काम के भी काबिल नहीं रहते, यानी आपके सीने में वो ताकत
1: ऐसी बात है, नहीं, वो नहीं रहती, बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन और कहाँ से मेरी बहन?
4: मैं गांव से बात कर रही हूँ, यानी ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत हाई रहता है ना।
1: ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है
4: जी, हाई रहता है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपको हकीम साहब बताएंगे। ये बताइए, मशवरा आपको है, आपके घर में किसी को है ये मशवरा, ये मसला किसको है? हेलो, तो जी इन कॉल तो ड्राप हो चुकी है जी, हकीम साहब इनको खुद मसला है ब्लड प्रेशर का या घर में किसी को मसला है, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: जिसको भी है पहले तो कोशिश ये करें कि अपने जो खुराक है, अपने जो मामलात हैं जरा, और अपने जहन को थोड़ा आजाद करें, बेफिक्र सोचे वगैरह ऐसी चीजों से बचें।
1: ठीक हो गया।
0: दूसरा ये हो गया कि अगर आप उसका प्रॉपर इलाज कराते हैं तो वो सबसे बेहतर है,
1: ऐसी बात है,
0: और अगर आप चाहते हैं कि मैं वक्ती तौर पर किसी नुस्खे से या किसी टोटके से या किसी जड़ी बूटी से इसको कंट्रोल करता हूँ, तो वो भी मुमकिन है। आप पंसारियों से छोटी चंदन ले सकते हैं, उसको लाके आप पीस के, और
1: ठीक है, हाँ,
0: छोटे चम्मच का आप चौथा हिस्सा ले लें, जरा कड़वा रखती है जायका, तो उसमें आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ,
1: ठीक है,
0: तो फिर इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा।
1: अच्छा हकीम साहब, हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है?
0: हाँ बिल्कुल है, अच्छा, कोई शक नहीं है।
1: अच्छा हकीम साहब ये बताइए कि आप ब्लड प्रेशर तो ऐसी चीज है यानी कि छुपी हुई है, कल भी हमने इसके ऊपर बात की, अब एक बंदे को जो है वो कैसे मालूम होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, यानी चेक किए बगैर उसमें ऐसी कौन सी लामत होंगी?
0: बाज का तुम्हारे सिम्टम्स बता देते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है, कुछ चक्कर आने या कानों की जो कनपटियां हैं हमारी, इनमें चुभन सी तीस सी पड़ना, और दूसरी बात है बाद का आंखों के आगे अंधेरा आ जाना।
1: अच्छा, अंधेरा आ जाना,
0: ठीक है, अब वो बंदा उसको ऐसा लगेगा जैसे सारा कुछ घूम रहा है,
1: चक्कर आना, यानी
0: चक्कर आ गए, उसको नजर आएगा कि मैं घूम रहा हूँ गोल गोल, किसी चीज को पकड़ के बैठेगा, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे मैं जमीन के साथ मैं भी घूम रहा हूँ,
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: और दूसरा कि आप जिस टाइम आप में ऐसे कुछ असरात आते हैं तो आप कुछ लोगों को तो टेस्ट से पता चल जाता है, जब वो मरीज के मुआलिज के पास जाते हैं तो वो उस चीज को देखते हैं या चेक कराते हैं तो पता चल जाता है, और बाज दफा ये मरूसियत से भी आ जाता है,
1: ठीक है,
0: बाज दफा हमारी खुराक से या हमारे मैदे की खराबी की वजह से,
1: हमारी अपनी गलतियों से ही हो जाता
0: है। जब मैदा हमारा ठीक है तो उससे हम काफी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, और अगर हमारा मैदा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। लेकिन ये सही है कि ये एक कह लें कि खामोश कातिल है और ये नुकसान पहुंचाता है।
1: चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहां से मेरे भाई?
0: शायद आवाज बहुत कम।
1: मेरे भाई आवाज आपकी बहुत ही कम आ रही है। तो जी इनकी कॉल भी जो है ना ड्रॉप हो गई है हकीम साहब, पता नहीं नेटवर्क आज को इशू है
0: नेटवर्क
1: जिसकी वजह से आवाज है ना बहुत ही कम आ रही है। तो जी हकीम साहब बात हो रही थी ब्लड प्रेशर की, तो ये तो हाई ब्लड प्रेशर की हो गई। अब अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर लो है तो उसके बारे में भी आप बताइएगा।
0: उसको भी ऐसा ही है कि उसको भी एक किस्म के गनूदगी और पारा गिरेगा और उसके लिए तकलीफ दे है, यानी वो भी बिस्तर पे कि यार मुझे, और उसमें वो कोमी की या बेहोशी की हालत
1: अच्छा,
0: में जा सकता
1: वो बेहोश हो सकता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
3: अब जो मैंने डेंट किया था वो बच्चे के बारे में,
1: ठीक है,
3: दोबारा कॉल करी इस वजह से मैंने दोबारा किया है।
1: बिल्कुल, आप दोबारा आपने कॉल की है। ये जो हकीम साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बताइएगा। हकीम साहब
3: वो थोड़ा हकीम साहब ने बोला अगर कमजोर हो,
1: हाँ हाँ, तो जी आप बताइए ना, आपका बच्चा कमजोर है?
3: आवाज नहीं आ रही
1: जी। हकीम साहब आप,
0: आपका बच्चा जिस्मानी लिहाज से कमजोर भी है?
3: जी मेरा बच्चा थोड़ा कमजोर है सही, लेकिन फूला हुआ है सही,
0: फूला हुआ है
3: जिस तरह आदमी चुस्त होता है इस तरह नहीं फूला पाने।
0: और दूसरा जो है वो उसे भूख वगैरह ज्यादा लगती है?
3: भूख तो रो की तरह बैठ जाता है बस, चम्मच की तरह काटना है।
0: ठीक हो गया।
1: ठीक है, ठीक है जी। आप रेडियो सुनिए हकीम साहब बताते हैं आपको जी।
0: आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगर सिटी में ही हैं तो आप किसी टाइम बच्चे को लेके जरा क्लिनिक पे आइएगा,
1: ऐसी बात है,
0: ताकि बच्चे की पूरी केस हिस्ट्री लेके और देख के फिर मैं उसके मुताबिक आपको मशवरा जरूर दूंगा जो बेहतर होगा।
1: ठीक है,
0: क्योंकि बच्चा सामने होगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल जनाब, आपका भी अगर इस तरह का कोई मसला है, आपके बच्चे को है खाना नहीं खाते हैं बच्चे, या उनको भूख नहीं लगती है, या दांतों को आपस में रगड़ना है, या जो है उनके मुंह से लाल आना यानी पानी टपकना रात को सोते वक्त, तो बिल्कुल बच्चे हैं बड़े हैं जिनको भी जिस किस्म का भी कोई मसला है, हर किस्म बीमारी का तसल्लीबख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। हकीम साहब मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर कल और शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम साहब खुद मौजूद होते हैं सारा दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रखते हैं। चाहे आप टांग से हैं, चाहे वजीरिस्तान से हैं, या टांग को मजाफा से हमें सुन रहे हैं, जनाब आपकी कोई भी बीमारी है आप एक मरतबा तशरीफ लाएं अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नर्स ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। तो बिल्कुल जनाब, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है आप हमारे मोहतरम हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। आप मेरे साथ डायल भी कर सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं 0319-55-23-404 और 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं सेहत के हवाले से। तो इंशाल्लाह हकीम साहब कल भी मौजूद होंगे अपने क्लिनिक पर सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, मालिजीन भी कहते हैं कि अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप चीनी खाना छोड़ दें।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: शुगर को ना, यानी कि चीनी आप ना लें, बिल्कुल मीठी चीज से परहेज करें, तो ये क्या तल्लुक है कि मोटापे से?
0: बात हो रही थी साइलेंट किलर की,
1: ठीक है,
0: खामोश कातिल,
1: हाँ,
0: और उसमें ये आपकी जो है चीनी भी शामिल है।
1: अच्छा, चीनी भी है उसमें,
0: इसको व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं,
1: ठीक है,
0: ये एक सफेद जहर है। उसकी वजह है कि जब गन्ने की पड़ियों को डाला जाता है बेल्ट पे शुगर फैक्ट्री में, तो जाहिर है इनको केमिकल के जरिए धोया जाता है।
1: अच्छा,
0: और फिर जब दाना बनता है, जब भी कुछ ऐसे मामलात हैं तो ये नुकसान है। इसके बजाय आप गुड़ या शक्कर
1: सही इस्तेमाल करें,
0: ये इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर है। लेकिन गुड़ भी इस्तेमाल करें तो वो करें कि जो देसी हो, थोड़ा सा स्याही माइल पे हो, लेकिन बिल्कुल व्हाइट किस्म का गुड़ ना हो, जैसे बिल्कुल सफेद गुड़ भी अक्सर रेडियो में बिक रहा होता
1: है, ऐसी बात है। हाँ।
0: वो केमिकल के जरिए है,
1: ठीक है। हाँ, तो वो इस्तेमाल नहीं करना,
0: उससे परहेज करें। उसके बजाय देसी शक्कर है या गुड़ है वो ज्यादा बेहतर है, चीनी नुकसान दे है।
1: चले ठीक है, तो समझ नहीं कर रहा हूँ हकीम साहब का जो कहना है कि चीनी, क्योंकि हकीम साहब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये भी हमने सुना है कि दूध में जब हम चीनी मिक्स करते हैं तो दूध की वो ताकत ही खत्म हो जाती है, इसमें
0: देखें ताकत का तो उसका अपना एक है, लेकिन बहरहाल यह है कि उसमें दूध में कुछ तब्दीलियां जरूर कहते हैं आ जाएगी, और जाहिर है वो केमिकल्स हैं, उन्होंने अपने आफ्टर इफेक्ट्स वो जाहिर तो करने हैं,
1: बिल्कुल ऐसी।
0: और फिर दूध भी खालिस ना हो,
1: ठीक है,
0: दूध में मिलावट,
1: ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम।

0: मतलब बकौल आपके कि आपकी आंखों में भी दर्द होता है, हो सकता है आंखों से पानी भी जारी हो जाता है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो अब चीज यह है कि देखना है कि आपकी क्या मसला हो सकता है, तो या तो फिर आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, तो मेरे नंबर पर कॉल कर लें ताकि तफसील से आपसे मालूमात ली जा सके, और या फिर अगर आप आना चाहें तो आप सुबह 8 से शाम 4 बजे तक आप अलशिफा दवाखाने पे आ सकते हैं इकबाल मार्केट, ताकि उस तरीके से भी आपको बेहतर मशवरा दिया जा सके आपसे तमाम मर्ज के बारे में पूछ के या आपकी केस हिस्ट्री लेके।
1: चलें ठीक है हकीम साहब, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो आखिर में सेहत के हवाले से अपने सामईन को पैगाम क्या देंगे, और ये भी बताते चले कि कल आप अपने क्लिनिक पर मौजूद होंगे।
0: जरूर इंशाल्लाह सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मैं हर रोज होता हूँ और कल भी मौजूद होऊंगा। सिर्फ वही वक्त है जो आपके जुमे की नमाज का होता है,
1: वही आधा घंटा
0: वो तकरीबन बंद होता है, उसके अलावा दवाखाना ओपन रहता है।
1: ठीक है,
0: और मैं शाम 4 बजे तक मौजूद अपने सीट पे रहूंगा।
1: ठीक है,
0: पेशेंट जाहिर है। तो बाकी जहाँ तक है वो आज के टॉपिक से ही है रिलेटेड, के साफ और सेहतमंद जिल्द के लिए सिर्फ खूबसूरती नहीं चाहिए होती,
1: ऐसी बात है,
0: बल्कि उसकी जो रीजन है उसके बाद उसकी मुनासिब देखभाल है, और जरूरत के मुताबिक किसी मुस्तरद मुआलिज से मशवरा और उसका सही इलाज।
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: तो आप अपनी जिल्द पे खाली ब्रांड देख के या इश्तिहार देख के आप मुख्तलिफ चीजें उस पर अप्लाई ना करें।
1: ठीक है,
0: आप अपनी जल्द के मुताबिक पहले मशवरा कर लें, उसके बाद आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, कम अज कम आप मजीद परेशानियों से बच जाएंगे, और यही मेरा आपसे कहना है कि जरा एहतियात कीजिए।
1: बहुत मेहरबानी है कि साहब, आप तशरीफ
0: लाए, अल्लाह
1: हाफिज़। सो बिल्कुल सामईन इकराम, आप लोगों ने गुफ्तगू समाअत फरमाई देसी तिब के माहिर हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की, जो कि अलशिफा दवाखाने के रूह रवां हैं, सरपरस्त आला हैं, पूरा दिन अपने क्लिनिक में मौजूद होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक और मरीजों का चेकअप मायना जारी रखते हैं। सो बिल्कुल जनाब, कसासो हम चीरे दस से हथ हवाले सरा मसले भी सासो यो चीरे दा से बीमारी दा चीरे ज्यादा तेरा जुनू मुबत कड़ी भी और सासो चुकामा मसला दा अन्न दा हल शव है। बिल्कुल जनाब, सासो दा फारा मौका दा दा टांग का मजाफात और वजरिस्तान खलको दा फारा डी असर अपॉर्चुनिटी दा मौका दा चित इस्लामाबाद और रावलपिंडी दौरा युत शरबाकार हकीम सासो अखबल शहर टांग की दा अखबल खिदमात और कवि अलशिफा दवाखाना की अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के बहकीम सेब सबा मला 8 बजे नवाल अदा मकाम 7 बजे पूरे मौजूद भी और मरीजान चेकअप आयना बचारी साथी। तो बिल्कुल जनाब सेहत का पैगाम समाज पर मैंने पेवे ते हकीम सैयद मशकूर है मशाह साहब बने सारे नाल इस प्रोग्राम में मौजूद होने जनाब, जेरे मेरे भेणिया बिरा में सुन दे पे, चाहे तुसा टांग सिटी तो सुन दे पेवे या आस पास घर चू अपने अपने इलाक चू चौंखा दे बैग उसा को सुन दे पेवे या घर बैग सुन दे पेवे जनाब, इंशाल्लाह हकीम साहब बने कल मौजूद हो सन, जेरी भेण को जेरे बिरा को कोई भी किस्म का मसला है पिया हकीम साहब को हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज मौजूद है। अलशिफा दवाखाना दोते जनाब हकीम साहब बने फजर अले 8 कोल चाके ते शामी जड़े है 4 बजे तक मौजूद हो सन अलशिफा दवाखाना दे विच, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे थे, सो हमारे शो का टाइम है वो भी खत्म होने वाला है, तो हकीम साहब कल अपने क्लिनिक पे मौजूद होंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक। इसके अलावा अगर आपको कोई सेहत के हवाले से सवाल रह गया है या आप शो में नहीं पूछना चाहते थे तो आप शो के बाद हकीम साहब से राबता कर सकते हैं इसी नंबर पर 0319-55-23-404 पर, आप प्रोग्राम के बाद भी हकीम साहब से राबता कर सकते हैं और सेहत के हवाले से हकीम साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हुआ चाहता है, हकीम साहब कल अपने क्लिनिक पर सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आयना जारी रहेगा। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर नोट फरमाइए 0319-55-23-404। इसी के साथ मैं भी आप लोगों से चाहूंगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान एंड अस्सलाम वालेकुम।

जी जनाब, केसर नाइट क्रीम जो कि जाफरानी फार्मूला क्रीम है, और इस क्रीम को जब आप इस्तेमाल करेंगे, जाफरान को अगर मैं मुख्तसर आपको बताऊं, लंबी तकरीर ना करूं, और मैं आपको कोई पूछे मुझसे कि भाई आप जो इतनी तारीफें करते हैं जाफरान की, जाफरान कौन से तीन बड़े काम करता है, तो जाफरान वो तीन बड़े काम करता है जो तीन अलग अलग क्रीमें काम करती हैं। ठीक है, इस वक्त मार्केट में आपको कुछ क्रीमें मिलती होंगी जो कि एंटी रिंकल्स होती हैं, झुर्रियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ होती हैं एंटी पिगमेंटेशन होती हैं, यानी कि वो आपकी स्किन के ऊपर छाइयों को खत्म करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती हैं, कुछ ऐसी क्रीमें होती हैं जो कि आपकी स्किन को इन अ वन टोन लेकर आती हैं। तो केसर जो जाफरान है उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये तीनों खूबियां रखी हुई हैं, यानी कि जिस भी मेरी बहन को झुर्रियां हैं वो जाफरानी क्रीम इस्तेमाल करे, जिस भी मेरी बहन के चेहरे के ऊपर छाइयां हैं वो जाफरानी क्रीम इस्तेमाल करे, जिसके का भी चेहरा खुश्क रहता है, मॉइस्चराइजेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन है, वो इसको इस्तेमाल करे, जिसका भी चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं और स्किन एक कलर में नहीं है, वो जाफरानी फार्मूला इस्तेमाल करे। केसन जाफरानी फार्मूला आपको 320 रुपए का मिलता है, और केसन वो वाहिद कंपनी है इस वक्त मार्केट की अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके पास जाफरानी साबुन पिछले एक साल से है, और यही वजह है कि इस वक्त किसी भी कंपनी का जाफरानी साबुन नहीं है सिवाय केसन कंपनी के। डेरा टांग पहाड़पुर में आप घूमे, एक एक दुकान के ऊपर जाए, पता करें, जाफरानी साबुन आपको सिर्फ एक कंपनी का मिलेगा, और वो है केसन नेचुरल पाकिस्तान।

0: सेकंड फर्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह अक्टूबर में आपको शुरू हो जाएंगी। लास्ट कॉलर,
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, लास्ट कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मैं किंग किंग रेस्क्यू वाला हूँ केसर की, उस दिन जो मैंने दी थी आज।
0: जी जी, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ, बहुत मजा करता है।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह, पैसे जाया तो नहीं हुए मेरे भाई के? नहीं तो मैं 150 निकाल लेता हूँ जेब से। कैसा लगा सिरप आपको हमारा हाजमे वाला?
1: अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छा है। और मैं पेट कम सिरप भी लूंगा जो है ना, पेट कम वाला वो पत्ती, मेरा पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मैं रोज आपका
0: पेट फौरन इंशाल्लाह आप जैसे फक्की इस्तेमाल करेंगे, नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर वो जो आपका पेट चिंची के ऊपर आगे निकला होता है ना, वो अंदर चला जाएगा। ठीक है,
1: आपकी शॉप पर आऊंगा, कौन सी जगह पर है
0: ये? आप हमारी शॉप आ सकते हैं मियां, कमर्शियल मार्केट के पिछले हिस्से की तरफ जब आएंगे तो वहाँ पर अकबर प्लाजा है और उसी के अंदर केसन शॉप है, तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और हाजमा कंट्रोल ने गैस खत्म किया आपका, या तेजाबियत खत्म की है, या बदहजमी को खत्म किया है?
1: बदहजमी को खत्म किया है, और जो है ना मेरा पेट निकला हुआ है, मैं वो फक्की लूंगा ना तो फिर मुझे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब फक्की लेके जाएंगे तो आपका हाजमे का मसला भी साथ में हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया चिंची। नाम क्या आपका? नाम क्या है चिंची वाले भाई?
1: औरंगजेब।
0: औरंगजेब भाई, चलो जी याद रखेंगे आपको।
1: कांचका वाली मस्ती, रमानिया अस्पताल के साथ
0: कांचका वाली मस्ती। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये प्रोग्राम रोजाना सुनता है और जो भी हमारा प्रोग्राम सुनता है ना, फिर वो हमारी प्रोडक्ट जरूर खरीदता होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, खलील भिरा मेहमान मैंने आया बता है के यू सदना लहीन जनाब सारे आमिर रवान पाकिस्तानी, मैं को आता है हमारा हलमा घिना दे है, हलमा घिरना है उकु जिद चा नपड़ा हिस जो केसन दा हलवा, केसन दा हलवा कोनी मेरा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहूंगा टांग से, पहाड़पुर से और डेरा वालों से, कल 4 बजे एक दफा फिर से आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने कहा।
2: You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

0: سن رہے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسی بیماری جس کا علاج آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرایا ہے لیکن آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے، آپ کو آفاقہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی میں نے تو 15,000 کی، 20,000 کی، میں نے تو لاکھوں کی دوائی کھا لی ہے لیکن اس سے مجھے فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے، مجھے صحت ہی نہیں مل رہی ہے، تو بالکل جناب اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، صحت یاب ہونا چاہتے ہیں بغیر ٹیکے کے، بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے، تو بالکل جناب دیسی طریقہ کا علاج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے، آپ علاج کرا سکتے ہیں الشفا دواخانہ سے۔ بالکل جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا کوئی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ 100% ہربل ہوتا ہے، دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جس بھائی بہن نے بھی علاج کرایا ہے دیسی طرح کا علاج وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ سو بالکل جناب جس عمر ہم پختنا سمنگا پروگرام عربی خویان دے برونا مشر کشر ساسٹول تاہم پروگرام کے ہر کلر مائما اگرانو عربیدن کو دے پروگرام کی مجھے خبر رکھو دستاسو صحت بارے چھے اخ خویان دے اخ برونا سک چھے دا مختلف ہو بیماریانو چھے گیر چھے بیدے جناب ولی دا نفس نفسی دور دے ہر کس چھے لیکن آڈیر پر جلدی کے دے او دے جلدی کے مونگ ندا سے غلطیاں نے وشی چھے اگے نہ بعد مونگ یو دا سے بیماری لحق شی چھے اگے ساسو ڈیر جات علاجو نہ ہم کہو بیا مطلب چھے ساسو کم صحت دا انے روکے شی۔ بالکل جناب دی مقصد لا تحت تو مونگ دا پروگرام دے صحت پیغام دے ساسو دا پارا کم چھے الشفا دواخانے خصوصی تاؤن سر ساسو بخدمت کی پیش کرو او گرانو آیویدن کو دے پروگرام کے مونگ سر موجود بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب حکیم صاحب تعلق اسلام آباد راول پنڈی نہ دا او حکیم صاحب دا دیسی طریقہ علاج سر دا شاہ تا دیس کالو نہ وابستہ دے او مریضانو چیک اپ آئینہ دا پاکستان مختلف شہروں کے کھڑے دے استاس اخبل شاہ ٹانگ کے اخبل مریضانو چیک اپ آئینہ جاری ساتھی۔ اب بالکل سر آپ کا ساسو ہم دے چیری صحت حوالے سر مسئلے بھی او دا سے بیماری دا چی جی زیادہ لازنم اگر لکڑی بھی او ساس رکم آغا بیماری دا آنا ختمی جی زیادہ شوے دا او بالکل جناب ساسو دو پارا یو اپرچونیٹی دا یو موقع دا ساسو اخبل شاہ ٹانگ کے حکیم سید مشکور مشاہ سے بروزانا موجود بھی سبا ملا 8 بجے دا مقام 4 بجے پورے بالکل جناب حکیم صاحب موجود بھی الشفا دواخانہ کے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے۔ بالکل جناب یہ بھینیا برام میں کس طرح کی سننے پہن تو میں پروگرام ویلکم آدھا جناب اگر تہاڈا بھی کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ودا ہوئے تو حکیم صاحب کو پوچھ سکتے اس پروگرام دے وچ جناب یہ پروگرام صحت دے حوالے دے نال اسی جو سوال کرنے ہونے ہیں تہاڈی صحت دی جی تو کوئی بیماریاں ہونے ہیں یا تو کوئی ایسی بیماری مبتلا دے وے جہاں علاج کرا کے تم تھک چکے ہوئے بھائی انس برا میں تب زیادہ علاج کرایا میں تو میں کو تو بالکل شفا نہیں ملتی پی تو بالکل جناب ایک دفعہ تسن ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ بالکل تسا آ سکتے وے مریضوں دا چیک اپ معائنہ کرا سکتے وے تے انشاءاللہ جڑے بھی مریض میں کوئی ایسی موزی مرض مبتلا ہیں جنہاں کو آکھا گیا ہوئے بھائی تمہارا علاج نہیں تھی نا جناب ایک دفعہ تسن تشریف گن کے آنا تو آپ ہی تمہارے گھر چ کوئی ہے ایک دفعہ ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تھے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ۔ سو بالکل لسنرز یہ شو بالکل لائیو ہے براہ راست ہے کوئی ریکارڈڈ شو نہیں ہے سو چلیں گے جی صحت کے سفر کو ہم آگے بڑھاتے چلیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے لیکن کالز کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کال کا نمبر اپنے پاس لکھ لیجیے 0319-55-23-404 پر۔ سو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جناب تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد آپ کی کالز لیں گے جناب حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ بہت ساری بہنوں کے بھائیوں کے یہ میسیجز آتے ہیں کہ نس بھائی ہمارے چہرے پر کیل ہیں مہاسے ہیں چھائیاں ہیں دانے ہیں میری عمر 14 سال ہے 15 سال ہے تو اس طرح کی بے شمار سوالات آنے کے بعد حکیم صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو چہرے پر دانے آتے ہیں بہنوں کو یا رنگا سانولی ہو جانا تو اس کی کیا وجوہات ہیں سو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں چلتے ہیں جی حکیم صاحب ہمارے ساتھ آن یور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں السلام علیکم حکیم صاحب۔
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا
0: ایسی بات ہے
1: کہ آپ خدمت بھی کریں یعنی خدمت خلق ایک فریضہ تو ہے، ایک
0: ایسی بات ہے، ہاں بالکل.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو سمجھو. اگر آپ اس کو اس کا حل نہیں نکال سکتے ہو تو کم از کم آپ اس کو ایک اچھا مشورہ تو دو،
0: ظاہر سی بات ہے
1: کہ جو اس کے لیے بہتر ثابت ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں وہ علم دے جس میں نفع ہو، اور خدمت کرنے کا جو ایک جذبہ یا جو ایک
0: ایسی بات ہے
1: اس کی توفیق دے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک بہتر سا کرے کہ ہم کسی کے لیے کوئی اچھا ثابت ہو.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: باقی ہمارا پروگرام ہے اور صحت سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ صرف ایک آگاہی کا پیغام ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل،
1: کہ جو لوگوں تک چند جڑی بوٹیاں یا دیسی ادویات، کیونکہ یہ ہے ہی بیس دیسی جڑی بوٹیاں
0: ہے بالکل،
1: تو اس کے ذریعے صرف یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ یار آپ یہ جو جڑی بوٹیاں کچھ لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں، کچھ ضائع کرتے ہیں جو اوریجنل حالت میں جیسے ہمارے ارد گرد ہیں، تو ان سے ہم اپنے لیے بہتر کام لے سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اور صرف اس کو استعمال کا طریقہ، اور دوسرا یہ کہ کس فائدے میں ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: تو اس کے لیے کوشش ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب.
0: بالکل ایسی بات ہے. حکیم صاحب بتائیے گا ذرا کہ جو آج چہرے کے حوالے سے بات ہم کریں گے، کیونکہ بہت سارے آپ کو کالز آتی ہوں گے پروگرام کے بعد، مجھے تو شو میں بھی آن ایئر بھی آتے ہیں، بعد میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ چہرے پر بہت زیادہ دانے اکثر بہنوں کے ہوتے ہیں اور بھائیوں کے بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
1: یہ ایک بڑا عام سا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پمپلز نکلنا، چھائیاں اور دانے. یہ صرف پہلے تو تھا کہ یار اس کو بندہ یہ تصور کرتا تھا کہ یار یہ نوجوانی کے عالم میں نکل آتے ہیں
0: کو
1: یا بعض بچیوں کو، تو اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ ان کے لیے اپنے کوئی نسخے کوئی دوائیاں استعمال کرتے تھے.
0: بالکل.
1: لیکن آج کل یہ بہت زیادہ طور پہ ہونا شروع ہو گیا ہے.
0: بالکل.
1: اس میں صرف ہمارا ایک تو جو خوراک ہے کچھ اس کی متوازن نہیں ہے، وہ غیر متوازن کہہ سکتے ہیں، اور ایسی جنک فوڈ ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، تو وہ تھوڑا سا مسئلے پیدا کر رہے ہیں کہ معدے میں تیزابیت، جسم میں حدت، ہاتھوں پیروں میں سے سیک نکلنا، تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ جلد پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور چہرہ جو ہے یہ سب سے حساس عضو ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اس پہ جو ہے بہت جلدی اس کے اثرات نظر آتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: اب کچھ لوگوں کے چہرے پہ کبھی کبھار ایک آدھ دانا نکل آتا ہے، اور بعض کے چہرے پہ مسلسل مہاسے اور یہ چیزیں رہتی ہیں.
0: ایسی بات.
1: ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نشان بھی چھوڑ جاتی ہیں چیزیں، سیاہ یا بھورے رنگ کے، کچھ لوگ ہاتھوں سے انہیں دباتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو اس سے وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو دانے ہیں یا یہ چھائیاں ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں، ہماری اسکن کیسی ہے، ہم اس پہ جو چیز اپلائی کرنے لگے ہیں آیا وہ کارآمد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک جلد ایک جیسی نہیں ہے.
0: بالکل
1: فرق ہے. اب اس میں کچھ چیزیں سینسیٹیو ہیں اور وہ آ کے پھر تھوڑا سا اثر انداز دیتی ہیں، جس کے بعد میں پھر نشانات
0: افیکٹس
1: وغیرہ ثابت ہوتے ہیں، جس طرح آج کل کیمیکلز کی کریم ہے، لوشنز ہیں، ان کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اس میں اپنی جلد کو پہلے سمجھنا ضروری ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ کسی معالج سے مشورہ بھی کر لیں، اور اس کے مطابق پھر آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس میں آپ بہت بہتری فائدہ لے سکتے ہیں. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جلد یہ جو ہیں دانے یا پمپلز، تو آخر بنتے ہی کیوں ہیں؟
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب جلد میں کیونکہ بہت سے دیکھیں تو باریک باریک مسام ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: چھاننی کی طرح کے، جس میں سے پرسینے کی شکل میں مختلف جو فاسد مادے بھی ہیں یا ہمارے نمکیات ہیں، وہ جسم سے پھر خارج ہوتے ہیں.
0: بالکل.
1: ان سے بعض اوقات ایسا ہے کہ تیل کی طرح بھی جلد سے خارج ہو جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: تو اب جب اس میں آئل کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو پھر جو اس کے مسام ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: وہ تقریبا بند ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر جب بند ہوں گے تو وہ چیزیں پھر یہ کہہ لیں کہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور یہ سوزش والے دانے اور یہ چیزیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں. اب اس میں ये देखना यही है, उसके मुताबिक फिर उसका इलाज है। बात तौर पर ऐसा होता है कि जब हम बलोगत के पीरियड से गुजर रहे होते हैं, तो वो बच्चे हैं या बच्चियां तो उसमें हार्मोन्स भी तब्दील हो
0: रहे हैं। बिल्कुल, तब्दीली होती रहती है।
1: जब हार्मोन्स की तब्दीली होगी तो उसकी वजह से भी जो ऑयल है हमारी जिल्द में उसकी पैदावार बाज़ुकात बढ़ जाती है।
0: ऐसी बात
1: है, बिल्कुल। इसलिए भी बाज़ुकात ये होता है कि नौजवानी में कह लें या छोटी उम्र में कह लें, ये एक्नी वगैरह और ये चीजें ज्यादा जो है वो आम भी हो जाते हैं।
0: ऐसी बात
1: है,
0: बिल्कुल।
1: अब ये बात ये है कि ये मसला जो ज्यादातर एक छोटी उम्र तक या नौजवानी तक भी महदूद नहीं रहता है, बाज़ दफा ऐसा होता है कि लेडीज में भी कुछ मसले हैं, कुछ पेचीदा मसाइल हैं, उनकी वजह से तब्दीली और हार्मोन्स की तब्दीली या उसके मसाइल या बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल, उससे भी ये चीजें मुहासे पिंपल दाने ये बाज़ुकात बढ़ जाते हैं।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: अब मर्दों में भी ऐसा ही है कि हार्मोन्स या कह लें कि उसे हम कह देंगे ऑयली जिल्द जो है,
0: ऐसी बात है,
1: पसीना है, बाज़ुकात जो लोग शेव करते हैं उनसे भी बाज़ुकात जलन, बैक्टीरिया या कुछ मुख्तलिफ ऐसी केमिकल्स की प्रोडक्ट्स जो हम स्किन पे इस्तेमाल करते हैं अपनी जिल्द के लिए, तो वो भी बाज़ दफा इसमें अपना हिस्सा डाल देती है या कह ले कि वो इसका जरिया बन जाती हैं।
0: ठीक है
1: सर, ये नहीं है कि आप अपनी जिल्द के, हमारी जिल्द अगर साफ नहीं रहती या स्किन पे तो उसकी वजह से निकलते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो हमारे मसाम हैं अगर वो बंद हो रहे हैं, चाहे हमारी जिल्द साफ भी है, हम बेशक दिन में दो दफा नहाएं या तीन दफा नहाएं या कोई फेस वॉश या ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मसाम अगर बंद होते हैं तो उसमें कोई सोजिश हो सकती है, कोई हार्मोन्स का मसला आ सकता है, कोई बार दफा ऐसा होता है कि और दीगर काफी चीजें ऐसी शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इनको एक तो पहली बात है कि कोई भी अपनी तरफ से उस पर कोई चीज अप्लाई ना करने की कोशिश करें, कोशिश करें कि आप अपने मुआलिज से मशवरा कर लें,
0: ठीक है,
1: और अपनी स्किन के मुताबिक और अपने जो मसला है उसके मुताबिक उसका हल भी
0: ठीक है
1: तलाश कर लें।
0: बिल्कुल,
1: इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे वो चीज साबित हो जाएगी और उसके फिर आप अपने मुआलिज से मशवरा करके उसके मुताबिक अपना जरिया अपना सकते हैं ताकि उसमें आपको बेनिफिट्स मिले।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: बार बार मुख्तलिफ नोयत के मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबन या ऐसे कोई लोशन वो जरूरी नहीं है।
0: ऐसी बात
1: ठीक है, हाँ। आप उससे देसी तरीके से भी कर सकते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: बहुत सारे लोग हकीम साहब शॉर्टकट ही करते हैं, कोई लोशन इस्तेमाल कर ली, कोई क्रीम इस्तेमाल कर ली, इसलिए क्योंकि अभी इतनी एज भी नहीं होती और ये चीज इस्तेमाल कर
1: असल
0: लेते हैं।
1: में होता है, ऐसा ही है। और आजकल जितने फेस वॉश हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, तो वो लोग यही समझते हैं कि बस हम फेस वॉश लगाते हैं इससे हमारा चेहरा साफ हो जाता है।
0: बिल्कुल, ऐसी बात है,
1: बिल्कुल। वो चेहरा साफ करते हैं, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं कि वो आपके रंग को साफ करते हैं, लेकिन वो आपकी जिल्द पर कुछ ऐसी असरात छोड़ जाते हैं कि जो बाद में आपके लिए बाज़ुकात पेचीदगी।
0: ऐसी बात है, ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: अब फिर उसमें होता है कि अगर कोई एक आध दाना निकल भी आया तो हम उसको छेड़छाड़ करके मुजीद बढ़ा लेते हैं, अब चाहे नखूनों से करें चाहे हाथ से उंगलियों से दबाएं, तो अब उसमें सोजिश भी बढ़ेगी,
0: ऐसी बात,
1: इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ेगा, और उसमें से जो रतूबत निकलेगी वो जिल्द पे जहां भी लगेगी वहां एक नया दाना या नया एक जरिया बना देगी और फिर बाद में मुस्तकिल तौर पे कह लें कि वो दाग भी वाजे छोड़ जाते हैं, तो हम उन दागों की सफाई के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स के चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि यार ये काले हो रही
0: है।
1: तो चीज ये है कि अगर ऐसा होता भी है तो उन्हें छेड़ने की बजाय आप सबसे पहले तो मुस्तनद मुआलिज से मशवरा करें, और अगर आप बेशुमार चीजें हैं कि आप नीम के नीम का साबन है, नीम के पत्ते हैं, उससे भी आप चेहरा धो सकते हैं, इसके अलावा डेटॉल्स है उसको पानी में आप शामिल करके उससे धो सकते हैं ताकि वो जो एंटीबायोटिक का काम करेगी, जरा भी मारेगी, इन्फेक्शन को दूर करेगी, जलन को दूर करेगी और आपकी जिल्द पे किसी किस्म के कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आएंगे। बाकी जहां कुछ ऐसे हैं, अब ख्वातीन ज्यादातर लाइट या डार्क एक किस्म का मेकअप का भी सहारा लेती हैं।
0: ऐसी बात है,
1: पंजन में जाने। अब उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ केमिकल्स, कुछ जरिए ऐसे कि जो बाद में आपकी जिल्द पे बहुत ज्यादा।
0: हकीम साहब, वैसे अगर बताया जाए तो मेकअप टोटली जो है वो केमिकल ही होता है।
1: है तो केमिकल ही,
0: क्योंकि नेचुरल चीज तो नहीं है।
1: नेचुरल नहीं है।
0: अगर कोई बंदा कहता है, कोई जिसका पार्लर है जनाब, अगर वो आपको कहता है कि मेरी चीजें कुदरती हैं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना।
1: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले वक्तों में देख लें, सबसे पहले ज्यादा हमारे बचपन में तो ज्यादा तिब्बत क्रीम इस्तेमाल होती थी और उसको लोग इस्तेमाल, बल्कि अब वो चल रही है। तकरीबन मेरी भी एज 60 के करीब पहुंच रही है और मैं उसे मुसलसल देख रहा हूं। तो चीज ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी भी केमिकल से मुबर्रा हैं,
0: ऐसी बात है,
1: और वो नुकसान नहीं देती। या फिर यही है कि देसी में तो आप लोशन तैयार कर सकते हैं,
0: ऐसी बात है, ऐसी बात है,
1: अपने चेहरे की सफाई के लिए। लेकिन केमिकल की कोई भी आप क्रीम या कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स आएंगे वो फिर आप उनके लिए फिर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे।
0: ऐसी बात, इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
1: जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज्यादा मसला बन
0: जाएगा।
1: किसी से मशवरा करना और वो भी मुआलिज से, ताकि वो आपकी स्किन को देख के या आपकी जो हालत है उस टाइम, आपके दानों की, आपके पिंपल्स की या छाइयों की, तो वो उसको देख के फिर आपको जो मशवरा देगा,
0: ठीक है,
1: वो उसमें बेहतर आपके लिए साबित होगा।
0: ठीक है।
1: बाकी अपनी खुराक पे जरूर, खासकर मर्द हजरात जो अब बाजारी जो खुराकें और खासकर रोगनी ऑयली या कह लें कि बहुत ज्यादा स्पाइसी किस्म के या मिर्चे मिसाले और ये तेल वाली चीजें, तो ये चीजें जब खाएंगे तो फिर उनकी जिल्द पे उसका असर तो आना है,
0: जाहिर सी बात है।
1: फिर वो दाने निकलेंगे। आजकल लड़के हैं खासकर स्कूल के या काले, वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यार हमारे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और मुस्तकिल निकल रहे हैं,
0: मुस्तकिल निकल।
1: तो फिर लेकिन जब उनसे इस बारे में बात हो कि यार आपके खुराक क्या है,
0: हाँ,
1: तो खुराक में ज्यादातर वो समोसे पकोड़े और ये चीजें
0: बाजारी हैं, स्टूडियो को टोटल,
1: तो वो शवारमा खा लिया जी, हमने ये खा लिया, तो ये चीजें थोड़ा सा नुकसान करती हैं। और फिर
0: सॉरी,
1: उसमें आप सहारा लेते हैं मेडिसिन का या इस चीजों का कि जो उसको रिमूव करें, लेकिन वो उल्टा और असरात दे जाती हैं। हाँ, देसी अद्वियात में ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाए बगैर आपको एक तरफ से राहत भी देती हैं और उस मर्ज से आपकी जान भी छुड़ाती हैं।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: आप नेचुरल के जो है, नेचर के करीब आए, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें, तो उसमें फिर रिजल्ट जो है वो आपकी मंशा के मुताबिक आ जाता है।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ,
1: छाइयां क्योंकि मेन किरदार अदा करती हैं, बाजे छाइयां आ जाती हैं, वो छाइयों की वजह से परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: लेकिन वो ये नहीं देखते कि बाज दफा हम लोग अपना ज्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं या कह लें कि सूरज की रोशनी में गुजारते हैं या धूप में गुजारते हैं,
0: काम करते हैं,
1: तो उसमें फिर हमारी जिल्द पे असर अंदाज होती है
0: सूरज की रे,
1: और उससे भी छाइयां। और बाज का ज्यादातर जो है वो आर्टिफिशियल जो केमिकल्स हैं,
0: ठीक है,
1: इनसे भी छाइयां आ रही हैं। फिर उसमें हमारी खुराक का भी अमल दखल है।
0: अच्छा, खुराक का तो हकीम साहब बड़ा अमल दखल होगा ना।
1: खुराक ज्यादा है क्योंकि हमने खानी वही चीजें हैं ना, कि हम सिर्फ जबान के जायके को देख रहे होते हैं।
0: ऐसी बात
1: कि यार हमें कुछ चटपटी सी चीज मिले तो, लेकिन वो जो मिसाले आ रहे हैं वो भी इस तरीके के नहीं आ रहे कि आप उस पर कह सके कि यार ये बिल्कुल क्लियर है या प्योर सही है। उसमें भी आजकल केमिकल है, फिर उसके अलावा जो चीजें आ रही हैं वो भी हैं, तो उनका रिएक्शन तो आना ही है। सब्जियां हैं तो वो भी फार्मी, तो ये चीजें सारी मिलके जब जिल्द पे असरअंदाज होंगी तो उसका रिएक्शन फिर इसी सूरत में आएगा कि आपके चेहरे पे झुरियां आ सकती हैं, छाइयां आ सकती हैं, दाने आ सकते हैं, पिंपल आ सकते हैं। और इसी चीज को देखने के लिए कि आप उसमें क्या क्या डिसाइड करते हैं, तो आपको एक मुस्तनद मुआलिज से मिलना पड़ता है ताकि वो आपकी जिल्द के मुताबिक आपको मशवरा दे सके।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने बात की मुर्गी के, फार्मी मुर्गी के बारे में,
1: जी,
0: तो हम बाजारों में देखते हैं मतलब कि सफेद मुर्गियां जो हैं,
1: जी जी,
0: जिनको बेलर कहते हैं या ब्लीडर कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं, सो वो हकीम साहब खुद खड़ी नहीं हो सकती,
1: ऐसा ही है,
0: और हम वो चीज खाते हैं, तो ये बताइएगा कि फार्मी मुर्गी जो है रेगुलर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हकीम साहब, बल्कि आजकल हर जगह
1: पूरे मुल्क में बहुत ऐसी बात है, इस्तेमाल हो रही है।
0: तो इसका कोई नुकसान है?
1: इसका अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान है। उसकी वजह है कि वो ये बात ठीक है, और एक दो दफा दुकानदारों से इस पे बहस भी हुई है कि वो उस पे पानी के छींटे मार रहे हैं।
0: हाँ, ये
1: यार ये थोड़ा सा फ्रेश हो, तो वो मैं कि इसको पानी डाल के इसको उठा रहा है कि यार खड़ी हो जा, गाहक आ गया तेरी मेहरबानी। मैं कि यार ये बीमार है, उससे खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और उसी का गोश्त हम खा रहे हैं।
0: जाहिर सी बात, और बड़ी शौक से,
1: और शौक से। और दूसरा ये है कि जरा ये महंगी हो जाए तो लोग किलोओं के हिसाब से लेना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं शॉर्ट हो रही है अपनी क्या।
0: ऐसी बात है, ऐसी बात।
1: हालांकि इसके मुकाबले में अगर हम बड़े गोश्त को लें, स्पेशली कट्टे के गोश्त को, तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: अच्छा, कट्टे यानी गाय का गोश्त है वो खाएं, वो बेहतर है।
1: देखिए बिल्कुल, गाय का दूध जो है वो एक नंबर है गजाइयत में,
0: ठीक है।
1: माँ के बाद अगर कहते हैं कि नेमुल बदल है
0: तो वो गाय का दूध ठीक हो गया,
1: ठीक है। लेकिन गाय का और भैंस का गोश्त जो है ये उतना सूटेबल नहीं है,
0: ठीक है।
1: ये जूद हजम नहीं है, देर हजम है, कब्ज करता है, हवा जिसम में रीवा हवा पैदा करता है, और इसी तरह ये शेवर मुर्गी का है,
0: ठीक है। ये भी रेगुलर नहीं खानी चाहिए,
1: रेगुलर नहीं।
0: बड़ा गोश्त,
1: बड़ा गोश्त अगर आप खाते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आप सब्जी का इजाफा करेंगे।
0: अच्छा, आप किसी सब्जी में डाल,
1: किसी सब्जी में डाल लें, टिंडे, घिया, कद्दू, तोरी, करेले, कुछ भी डालें।
0: अच्छा, हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं,
1: बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन जब आप एक तो सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके बादीपन को खत्म करते हैं, और दूसरा इसकी तबीयत को मुतदिल करते हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, किसी हकीम के पास जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए, तो सबसे पहले वो आपको बड़ा गोश्त ही मना करेगा,
1: वो इसी
0: परहेज में।
1: हाँ बिल्कुल, उसकी वजह है कि ये गोश्त थोड़ा सा देर हजम होता है, बादी पैदा करता है,
0: ऐसी बात है।
1: और दूसरी बात यह है कि हम लोग फिर उस तरीके का उसे तैयार भी नहीं ना करते, हम लोग मिर्चे मिसालों की ज्यादती करते हैं, लेकिन जो चीज उसमें चाहिए अदरक वगैरह और ये सारी चीजें जो उसकी री को खारिज बदले उसकी बादी की तबीयत को, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक इंसान के अंदर पांच बीमारियां हैं
1: जी,
0: तो वो पांचों मैदे की वजह से भी हो सकती हैं?
1: बिल्कुल हो सकती हैं। मैदा तो आपका मेन है ना, मेजर किरदार जो बॉडी में है वो आपका मैदा ही है।
0: ऐसी बात है, हाँ जी, हाँ जी,
1: उसकी बेस पे आप चल रहे हैं, आपके वजूद की ग्रोथ है, आपकी सेहत है, वो सारी आपकी मैदे की वजह से।
0: अच्छा, वो मैदे की वजह से ही है।
1: आपके चेहरे की ग्लो है, आपके चेहरे पे रौनक है, वो आपके मैदे की वजह से।
0: अगर आपका मैदा दुरुस्त नहीं है तो आप भी दुरुस्त नहीं होंगे। ऐसी बात है, आपके मैदे का भी मसला होगा, आपके चेहरे की रौनक भी नहीं होगी।
1: ऐसा ही है।
0: अच्छा, तो
1: आपकी हिम्मत बढ़ेगी।
0: ऐसी बात है, तो हकीम साहब, अगर एक बंदा अपने मैदे का इलाज आपसे करा लेता है
1: जी,
0: ठीक है, तो वो मतलब आधे से ज्यादा मसले तो उसके हल हो जाएंगे।
1: देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि मैदा जो है वो मेन एक किस्म का कह ले कि जिस तरह हम घर में दाखिल होने के लिए मेन डोर का इस्तेमाल करते हैं कि मेन दरवाजा है,
0: ऐसी बात
1: हम जाएंगे, तो मैदा जो है ये भी बॉडी का मेन एंट्रेंस है,
0: मेन एंट्रेंस है।
1: अब इसके लिए सबसे पहले इसका ठीक होना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: इसने ही आगे वजूद के जो हिस्से हैं उनको, इसने उनका मतलूबा जो उनका हिस्सा है वो उनको देना होता है, यानी उनको गजाइयत देनी होती है,
0: ऐसी बात है,
1: ताकि वो ग्रोथ करें, वो बेहतर हो, और उसके बाद जो बचता है वो फुजले की शक्ल में, स्टूल की शक्ल में जिसमें से खारिज हो जाता है।
0: बिल्कुल, ऐसी बात है।
1: अब मैदा अगर आपका ठीक है तो फिर तो आपको इतने मसले नहीं बनते, लेकिन अगर आपके मैदे में तेजाबियत, गर्मी, चाहे वो खुराक की वजह से है, चाहे वो आपके पानी कम इस्तेमाल की वजह से है, या कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीजें जो आर्टिफिशियल हैं या कह लें बाजारी हैं, और ये चीजें जब बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होंगी
0: ठीक हो गया,
1: तो वो फिर इसमें तसाबियत करेंगी, गर्मी करेंगी, और मैदे में गर्मी होगी तो आपके वजूद में हिद्दत होगी।
0: बिल्कुल, ऐसी बात है।
1: उसका असर फिर आपकी पूरी बॉडी पे आएगा,
0: स्पेशली
1: खासकर आपके चेहरे पे जाहिर होगा, और इसीलिए मैदा तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और इसीलिए कहते हैं कि मैदा दुरुस्त तो इंसान
0: तंदुरुस्त, ऐसी बात है।
1: मैदे ही से आगे काम सारा चलता है, तो इसी वजह से ये पिंपल और ये दाने और ये चीजें सारी हैं, तो
0: है।
1: कोशिश कीजिए कि आप अपने मैदे की इसलाह करें, ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े कि चेहरे पे दाने बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि उसमें से मुआद भी खारिज हो रहा है, उसमें सोजिश है, दर्द है, वरम है, तो उसके लिए फिर आपको सबसे पहले अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी देसी टोटका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि वो आपके लिए बिगाड़ पैदा करेगा, हो सकता है कि वो आपको राहत दे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप एक दफा मशवरा जरूर कर
0: चले, ठीक है,
1: फिर आप अपनी जल्द का भी
0: बिल्कुल सो बिल्कुल। खवातीनो हजरात, आप वस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। सो समीन इकराम, हकीम साहब ने आज बात की आपके चेहरे के बारे में, वो बहने वो भाई जिनके चेहरे पर कील हैं, महासे हैं, छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, छोटे छोटे दाने हैं, तो जनाब इंशाल्लाह आपके चेहरे पर जो मसाइल हैं बगैर केमिकल के इंशाल्लाह आपका इलाज किया जाएगा अलशिफा दवाखाने में देसी तरीका इलाज से। जिस बहन का भाई का चेहरे के हवाले से मसला है अपना देसी तरीका इलाज कराएं ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना झेलना पड़े, आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि आपकी जिल्द बड़ी नाजुक है, क्योंकि अगर आपकी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 18 साल या 20 साल तक है तो आपकी जिल्द बड़ी नाजुक है। अपनी जिल्द को केमिकल अशिया से बचाएं और देसी तरीके का इलाज की तरफ आएं। इंशाल्लाह हकीम साहब कल मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में। सो बिल्कुल आपकी बहुत सारे कॉल्स आए लेकिन हम पिक नहीं कर सके। सो अभी जिस भाई बहन का सेहत के हवाले से सवाल है, अपने भाई से हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर और 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई रेडियो को साथ बंद करें।
2: कर लिया
0: जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं नियाज बात कर रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: से बात कर रहा हूँ
0: जी। क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: हकीम साहब से पूछना चाहता हूँ।
0: जी जी बोलें, क्या पूछना चाहते हैं आप?
2: हकीम साहब से ये पूछना चाहता हूँ, सिर बहुत दर्द करते हैं और मैदे भी जलन करते हैं बहुत।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया मेरे भाई, आप रेडियो सुने हकीम साहब से मशवरा लेते हैं। ठीक है जी, हकीम साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप भाई?
1: इनके मैदे में तजाबियत भी है।
0: हाँ जी।
1: और दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये अपने टेस्ट करा लें, बाज दफा ऐसा होता है कि पित्ते में पथरी बन रही होती है, उसकी वजह से भी बाज दफा हाल ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। और वैसे अमूमन ज्यादातर यही है कि मैदे में तजाबियत की वजह होती है।
0: ठीक है,
1: अगर उसमें आप महसूस करते हैं जलन या दर्द ज्यादा है तो आप कुछ वक्त निकाल के दवाखाने पे आ जाएं ताकि आपकी नब्ज वगैरह भी, आपकी केस हिस्ट्री भी, आपके बॉडी
0: ठीक है,
1: सब देख के उसके मुताबिक आपको मशवरा दिया जा सकता है। या फिर यह है कि आप प्रोग्राम के बाद तफसीलन कॉल कर लें,
0: ऐसी बात
1: ताकि फिर तफसील में आपसे लेके तो आपको उसका हल बता सकूं।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल आप मेरे प्यारे भाई तशरीफ ले आए अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़द ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आपकी कॉल ड्राप हो गई है। सो समीन इकराम, सेहत का पैगाम आज समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है तो आप हकीम साहब से पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में हकीम साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक कल मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मेरे भरा, कौन थे कितु गाल करें दे पैवे?
2: रोशन
0: जी, रोशन साहब क्या पूछना चाहते हुए हकीम साहब दे कोलो? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, चेहरे के बारे चाहता मौसू है पिया अच्छा, सोच भी कम हो जाए। ठीक है रोशन भाई, रेडियो सुनते रहे और अपने दोस्त को भी कहें कि वो भी सुनते रहे, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। हकीम साहब, शहद की मक्खी ने भाई को काट लिया है, कहती हैं अब जलन भी कम हो जाए और सूजन भी कम हो जाए, तो ऐसी क्या चीज जो है ना मौके पर इस्तेमाल करें?
1: आप अगर खालिस शहद है वो भी अच्छा, इस्तेमाल हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है घर में या स्प्रिट पड़ी है,
0: ठीक है,
1: आप स्प्रिट भी लगा सकते हैं तो उससे यह है कि जलन कम हो जाएगी।
0: ठीक है, और सोजन है किमसा?
1: सोज उतर जाती है कुछ टाइम बाद इसकी खुद ब खुद। हाँ, बहुत ज्यादा मक्खियां या इकट्ठी काटें,
0: ठीक है,
1: तो फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है। फिर जाहिर बात है कि उसकी जो है मेडिसिन फौरी तौर पे लेनी पड़ती है। लेकिन अगर एक आध मक्खी ने काटा है तो कुछ देर बाद इसकी सोज उतर जाएगी।
0: चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से मेरे भाई? इंशाल्लाह हकीम से बस हवा मौजूद भी क्लिनिक बंद है सवा मल 8 बजे नवाला द मकाम सलोर बजे पूरे।
2: हेलो
0: जी जी हकीम साहब, इंशाल्लाह सवा मौजूद भी अखबार क्लिनिक के।
2: अच्छा,
0: हाँ हाँ, इंशाल्लाह सासुर आशे इंशाल्लाह सासुर का मसला हुआ बहाल शी।
2: चलो सर, हमारे दूसरे मरीज जान जाएगा
0: तो बिल्कुल रावड़े इंशाल्लाह हकीम साहब मौजूद हूँ। अल्लाह हाफिज जी। हकीम साहब प्यारे भाई ने कल पहाड़पुर से कॉल की थी
1: जी जी।
0: और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हकीम साहब कल मौजूद होंगे, मेरे 2-3 पेशेंट हैं उनको लाना है हकीम साहब के पास पहाड़पुर से। हकीम साहब आप खुद भी बता दीजिए कि आप कल मौजूद होंगे।
1: मैं सुबह इंशाल्लाह 8 बजे से 4 बजे तक जो रूटीन है दवाखाने की उसके मुताबिक मैं अपने क्लिनिक पे ही होऊंगा
0: इंशाल्लाह।
1: तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और
0: अपना चेकअप
1: बिल्कुल, और उसके बाद जो बेहतर हुआ वही मशवरा। देखें, बाज़ औक़ात हमारे कंसेप्ट ये भी है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि यार अगर हम दवाखाने पे जाते हैं तो हमें लाजमी दवाई भी लेनी
0: है। ऐसी बात है बिल्कुल।
1: लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये एक प्रोग्राम जो है ये अवेयरनेस के लिए है,
0: आगाही के लिए, पैगाम देने के लिए।
1: आपको एक पैगाम देना है कि अगर आप किसी भी मसले से 2-4 हैं,
0: बिल्कुल ऐसी बात
1: तो
0: है,
1: ये लाजमी नहीं कि आप उसका इलाज कराने चल पड़े।
0: ऐसी बात है,
1: आप सिर्फ आके उस पर मशवरा ले सकते हैं। अगर आपका दिल करता है, आपको कोई बात दिल पे लगती है,
0: ठीक है,
1: और फिर आप उसके इलाज के बारे में भी बात कर सकते हैं।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: और अदरवाइज आप सिर्फ मशवरा कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं कि मैं कौन सा लाहेमाल ऐसा अख्तियार करूं,
0: ठीक है,
1: कि जिससे मैं कम से कम अपने अपनी रूटीन में अपने मर्ज में कोई तब्दीली ला सकूं। तो मेरी सिर्फ यही अपने लिसनर से है कि आप ये चीज ना जहन में रखें कि हमने वहां जाके दवाई खरीदनी है, क्योंकि आप पैसे से इलाज तो खरीद सकते हैं लेकिन पैसों से शिफा नहीं ले सकते।
0: ऐसी बात है, शिफा नहीं ले सकते।
1: शिफा अल्लाह ताला की तरफ से है और वो कहां से है ये वही बेहतर जानता है।
0: बिल्कुल,
1: आप सिर्फ अपने बारे में मशवरा कर सकते हैं। और अगर मैं अपने में एक किस्म का फखरी महसूस होगा अगर मैं आपको कोई ऐसा मशवरा देता हूं या कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा टोटका बता देता हूं जो आपके लिए बेहतर साबित हो, तो उसमें मुझे अपने इलम पे फखर होगा। तो इसलिए आप इस चीज को जहन में ना रखें, आप मशवरा जरूर करें, मिलें जरूर, इसके बारे में जानें, ताकि आगे से आप किसी दूसरे को भी आगाही दे सके।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। सामीन, आपका जो भी मसला है जनाब सासु चेर मसले भी सेहत हवाले सर सासु बिल्कुल तशरीफ रावण लसो द अलशिफा दवाखाने था, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी के बहकीम साहब सबा व मौजूद भी सबा मल 8 बजे नवाला तमाम सलोर बजे पूरे और मरीजान चक्का पाना बाजारे साथी कसासु चीरे सेहत वाले सर सवाल भी बिल्कुल सासु दे प्रोग्राम के हम कॉल कबल सो 0963-511-488 बंदे और 0319-55-23-404 बने हम सासु कॉल कबल सो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, तो प्यारे भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सो जनाब प्रोग्राम सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया चाहता है। बिल्कुल ख्वातीनों हजरात, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है अपने मुअज्ज़ज़ हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो 0319-55-23-404 पर कॉल SMS भी कर सकते हैं और 0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, आपकी आवाज ही बिल्कुल नहीं आ रही है. सो जनाब, आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करें, 0319-55-23-404 पर आप हकीम साहब से कॉल के जरिए सवाल पूछ सकते हैं. और हकीम साहब कल अपने क्लिनिक पर मौजूद होंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा. मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और लाइव शो में हमें ज्वाइन करने के लिए, हकीम साहब से कोई मशवरा करने के लिए, कोई टोटका पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं. SMS के जरिए भी हकीम साहब से पूछ सकते हैं, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं, 0319-55-23-404 पर कॉल SMS कर सकते हैं. इसके अलावा 0963-511-488 पर यानी 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम साहब से सवाल पूछ सकते हैं. एक मैसेज है, हकीम साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, एक वाना से मेहंदी आती है, उन्होंने नाम भी लिखा हुआ तो वो हम नहीं ले सकते, कहते हैं कि वो बालों के लिए कैसी है. तो प्यारे भाई, अब हकीम साहब ने इस्तेमाल नहीं की है तो जी हकीम साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में.
1: मेहंदी अब उसके अज्जा क्या हैं इस बारे में नहीं कहा जा सकता.
0: अच्छा हकीम साहब, ये जिन मेहंदी के बारे में बात कर रही हैं या कर रही हैं ना, तो ये बेसिकली जो है ये काली मेहंदी है, यानी कि बालों को काला करने वाली. एक कॉलर है हकीम साहब. अस्सलाम वालेकुम.
3: हेलो.
0: अस्सलाम वालेकुम.
3: हेलो.
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम सरंगत जी.
0: अच्छा रंगयो जी, खैर खरीद तबियत जी. प्रोग्राम का
3: नंबर सही था?
0: हाँ बिल्कुल जी, दा सही नंबर दा सास वकीम से प्रोग्राम की कॉल करे था.
3: अच्छा मां मां सर बच्चा है दा बच्चा इसके दा बसुन अकड़पई से दा वाले को
0: गसुन अकड़पई
3: सुमरा
0: बिल्कुल बिल्कुल जी सास से कम लकड़ा से दा सुमरा उमर जो कॉल हो दे چو کالو دے چو رو مر دے دیوال بارہ کال دا سہی دے جی. ریڈیو ور وی حکیم صاحب سر دے بارے کی مشورہ کو
3: اوکے
0: سر سنب دیرہ مننا جی. حکیم صاحب بھائی پتہ کر رہے ہیں ان کا بیٹا ہے 12 سال کا اور رات کو نیند میں جو ہے نا وہ دانتوں کو آپس میں جو ہے نا کڑپاتا ہے, مطلب کہ رگڑتا ہے آپس میں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
1: اس کی وجہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں.
0: پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا.
1: اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور ہو سکتا ہے اب اگر یہ دوبارہ کال کریں
0: تو
1: یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ آیا بچہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہے,
0: یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں.
1: اس میں اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور اسی لحاظ سے بعض دفعہ دانت رگڑتے ہیں. تو اب چیز یہ ہے کہ آپ اس کا اگر تو شہر میں ہیں یعنی ٹانک میں سٹی میں ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو آپ بیٹے کے ساتھ آ سکتے ہیں دواخانے پہ اور اس کے مطابق پھر دیکھ کے اور بچے کی صحت دیکھ کے تو زیادہ کلیئر بہتر صورتحال سامنے آ جائے.
0: ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضرور دا ریڈیو در سر بند کا. ہیلو. جی میرے بھائی, جو بھی آپ کال کرتے ہیں تو مہربانی کر کے یا ریڈیو سے دور ہو گیا کریں یا جو ہے نا آپ ریڈیو بند کر دیا کریں, کیونکہ یہ شو میں بہت قیمتی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس جو کہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جناب آپ کا صحت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, اس کے بارے میں ہم صحت کے بارے میں ہی بات کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھیں کوئی ایسا پریشان بندہ ہوگا, کوئی ایسی بہن ہوگی, کوئی ایسا بھائی ہوگا جو کہ صحت کے حوالے سے بڑا پریشان ہوگا, ہمیں کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. سو جناب آپ کا کوئی بھی سوال ہے صحت کے حوالے سے آپ اپنے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں, میں حکیم صاحب سے پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا, حکیم صاحب آپ کو خود بھی بتائیں گے. آپ حکیم صاحب سے خود بات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں اپنے کلینک میں اور روزانہ کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آنا ہے وہ جاری رکھیں گے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا, آج ذرا سا چاول کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ نمکین چاول ہیں ہوں یا میٹھے چاول ہوں, اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ استعمال کرنا کھانا کیسا ہے. حکیم صاحب
1: بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے, میری اپنی فیوریٹ ڈش ہے, لیکن نمکین چاول.
0: نمکین یا میٹھے کے حساب؟
1: نمکین.
0: اچھا نمکین.
1: نمکین چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں.
0: ایسی بات ہے. ہاں
1: باقی یہ ہے کہ آپ میٹھے بھی استعمال کر سکتے ہیں, लेकिन चावलों की ज्यादती जो है
0: ऐसी बात है, हाँ
1: वो ठीक नहीं है ज्यादा,
0: ठीक है।
1: आप हफ्ते में एक आध दफा बना सकते हैं अपनी मेन्यू में अगर रखें तो चावल। और दूसरा यह है कि इसका नुकसान तो कम से कम कोई नहीं है।
0: अच्छा, इसका नुकसान नहीं है कोई,
1: लाइट से खुराक है, लेकिन जब हम इसको और ज्यादा मसाले डाल के और उसको बिरयानी की तरफ ले जाते हैं या मुख्तलिफ डिशेज, फिर थोड़ा सा यह है कि वो हमारे मैदे पे बोझ बनाते हैं, बाद तबीयत में वो पैदा करते हैं। लेकिन आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी ज्यादती जो है वो सही नहीं है।
0: ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि आजकल हर नौजवान इस मसले में मुब्तला है, यानी कि डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन दूर करने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए हमें?
1: इस पे पीछे हमारा प्रोग्राम रहा है, स्ट्रेस का,
0: टेंशन, डिप्रेशन के बारे में,
1: टेंशन का। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन है, हमें कम से कम उस पे नजर मारनी होती है।
0: ऐसी बात है
1: कि हमारे जो मामलात हैं वो कैसे हैं, किस तरह हैं, उसमें आपकी इबादत भी आ जाती है, आपकी खुराक भी आ जाती है, आपका रहन सहन भी आ जाता है, आपका लोगों से मिलना जुलना भी आ जाता है।
0: ठीक है,
1: तो जब आप मुस्बत तरीका अपनाते हैं तो फिर आप कामयाब भी रहते हैं।
0: चलिए, ठीक है हकीम साहब, नशे के बारे में अगर हम बात करें, नशा आपको पता है कि ज्यादा हो गया आजकल?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल,
0: चाहे वो जिस किस्म का भी नशा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो ये बताइएगा कि हकीम साहब क्या नशे का इलाज आपके पास है?
1: देखिए, बात ऐसी हैं चीजें कि जिनके लिए दवाखाना भी अभी
0: ठीक है
1: उस तरह पेशेंट को डील नहीं करता। हाँ, हमें मशवरा दिया जा सकता है,
0: ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट आपके पास ले आए हकीम साहब नशे का, यानी कि एक तो बड़ा हाई लेवल का चला जाता है ना, अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है या नसवार की आदत है, तो क्या ये छूट सकती है?
1: हाँ, बिल्कुल उसके लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो मुतासरा शख्स है उसकी कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद अपने आप में एतमाद पैदा नहीं करेगा और अपने आप में छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा,
0: ठीक है, हाँ,
1: तो फिर कोई मेडिसिन भी वहां काम नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि वो उसको यकदम ना छोड़े, और यकदम छोड़ी भी नहीं जाती, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं रफ्तार रफ्तार रफ्तार, तो आप उससे अपने आप को आजाद कर सकते हैं।
0: ठीक है हकीम साहब, एक और सवाल है, ये बताइएगा कि सिगरेट पीने से क्या फालिज हो सकता है?
1: सिगरेट पीने से
0: काफी बार सुना है हकीम साहब,
1: देखिये बाज दफा होता है कि जिस्म में आपके तब्दीलियां जरूर आती हैं,
0: ऐसी बात है,
1: और कुछ बॉडी में ऐसी तब्दीलियां तो वो उस तरफ आपको ले जा सकती हैं,
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: अच्छा,
1: लेकिन कोशिश करें कि आप सिगरेट का इस्तेमाल कम से कम करें, वरना और कुछ होना हो आप दमे के जरूर मरीज बन जाते हैं,
0: ये तो लाजमी है,
1: और फिर आप किसी काम के भी काबिल नहीं रहते, यानी आपके सीने में वो ताकत
0: ऐसी बात है, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं रहती, बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम
0: सलाम जी, कौन है, कहाँ से मेरी बहन?
4: जी, मैं गांव से बात कर रही हूँ, ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत हाई रहता है ना।
0: ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहते हैं
4: जी, हाई रहता है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो?
0: हाँ जी बिल्कुल, आपको हकीम साहब बताएंगे। ये बताइए, मशवरा आपको है, आपके घर में किसी को है ये मशवरा, ये मसला किसको है? हेलो, तो जी इन कॉल तो ड्रॉप हो चुकी है जी, हकीम साहब इनको खुद मसला है ब्लड प्रेशर का या घर में किसी को मसला है, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
1: जिसको भी है, पहले तो कोशिश ये करें कि अपने जो खुराक है, अपने जो मामलात हैं, जरा और अपने जहन को थोड़ा आजाद करें, बेफिक्र सोचे वगैरह ऐसी चीजों से बचें,
0: ठीक हो गया।
1: दूसरा ये हो गया कि अगर आप उसका प्रॉपर इलाज कराते हैं तो वो सबसे बेहतर है,
0: ऐसी बात है,
1: और अगर आप चाहते हैं कि मैं वक्ती तौर पर किसी नुस्खे से या किसी टोटके से या किसी जड़ी बूटी से इसको कंट्रोल करता हूँ, तो वो भी मुमकिन है। आप पंसारियों से छोटी चंदन ले सकते हैं, उसको लाके आप पीस के, और
0: ठीक है,
1: छोटे चम्मच का आप चौथा हिस्सा ले लें, जरा कड़वा रखती है जायका, तो उसमें आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ,
0: ठीक है,
1: तो फिर इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा।
0: अच्छा हकीम साहब, हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है?
1: हाँ बिल्कुल है, अच्छा कोई शक नहीं है।
0: अच्छा हकीम साहब ये बताइए कि आप ब्लड प्रेशर तो ऐसी चीज है यानी कि छुपी हुई है, कल भी हमने इसके ऊपर बात की, अब एक बंदे को जो है वो कैसे मालूम होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है यानी चेक किए बगैर उसमें ऐसी कौन सी अलामत होंगी?
1: बाज का हमारे सिम्टम्स बता देते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है, कुछ चक्कर आने या कानों की जो कनपटियां हैं हमारी इनमें चुभन सी तीस सी पड़ना, और दूसरी बात है बाद का आंखों के आगे अंधेरा आ जाना।
0: अच्छा, अंधेरा आ जाना
1: ठीक है। अब वो बंदा उसको ऐसा लगेगा जैसे सारा कुछ घूम रहा है,
0: चक्कर
1: आ गए, उसको नजर आएगा कि मैं घूम रहा हूँ गोल गोल, किसी चीज को पकड़ के बैठेगा लेकिन ऐसे लगेगा जैसे मैं जमीन के साथ मैं भी घूम रहा हूँ,
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: और दूसरा कि आप जिस टाइम आप में ऐसे कुछ असरात आते हैं तो आप कुछ लोगों को तो टेस्ट से पता चल जाता है, जब वो मरीज के मुआलिज के पास जाते हैं तो वो उस चीज को देखते हैं या चेक कराते हैं तो पता चल जाता है, और बाज दफा ये मरूसियत से भी आ जाता है
0: ठीक है,
1: बाज दफा हमारी खुराक से या हमारे मैदे की खराबी की वजह से,
0: हमारी अपनी गलतियों से ही हो जाता
1: है। जब मैदा हमारा ठीक है तो उससे हम काफी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, और अगर हमारा मैदा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन ये सही है कि ये एक कह लें कि खामोश कातिल है और ये नुकसान पहुंचाता है।
0: चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई?
1: शायद आवाज बहुत कम,
0: मेरे भाई आवाज आपकी बहुत ही कम आ रही है। तो जी इनकी कॉल भी जो है ना ड्रॉप हो गई है हकीम साहब, पता नहीं नेटवर्क आज कोई इशू है
1: नेटवर्क
0: जिसकी वजह से आवाज है ना बहुत ही कम आ रही है। तो जी हकीम साहब बात हो रही थी ब्लड प्रेशर की, तो ये तो हाई ब्लड प्रेशर की हो गई, अब अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर लो है तो उसके बारे में भी आप बताइएगा।
1: उसका भी ऐसा ही है कि उसको भी एक किस्म के गनूदगी और पारा गिरेगा और उसके लिए तकलीफ दे है, यानी वो भी बिस्तर पे कि यार मुझे, और उसमें वो कोमी की या बेहोशी की हालत में जा सकता,
0: वो बेहोश हो सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
3: अब जो मैंने टेस्ट किया था वो बच्चे के बारे में,
0: ठीक है,
3: मैं बोल रहा हूँ दोबारा कॉल करें, इस वजह से मैंने दोबारा किया है।
0: बिल्कुल, आप दोबारा आपने कॉल की है, ये जो हकीम साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बताइएगा। हकीम साहब
3: वो थोड़ा हकीम साहब ने बोला अगर कमजोर हो,
0: हाँ हाँ तो जी आप बताइए ना, आपका बच्चा कमजोर है?
3: आवाज नहीं आ रही
0: जी हकीम साहब। आप
1: आपका बच्चा जिस्मानी लिहाज से कमजोर भी है?
3: जी मेरा बच्चा कमजोर है सही, लेकिन फूला हुआ है, सही
1: फूला हुआ है,
3: जिस तरह आदमी चुस्त होता है इस तरह नहीं फूला पाने।
1: और दूसरा जो है वो उसे भूख वगैरह ज्यादा लगती है?
3: भूख तो रोज की तरह बैठ जाता है, बस चम्मच की तरह काटना है।
1: ठीक हो गया,
0: ठीक है जी। आप रेडियो सुनिए हकीम साहब बताते हैं आपको जो है।
1: आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगर सिटी में हैं तो आप किसी टाइम बच्चे को लेके जरा क्लिनिक पे आइएगा,
0: ऐसी बात है,
1: ताकि बच्चे की पूरी केस हिस्ट्री लेके और देख के फिर मैं उसके मुताबिक आपको मशवरा जरूर दूंगा जो बेहतर होगा।
0: ठीक है,
1: क्योंकि बच्चा सामने होगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल जनाब, आपका भी अगर इस तरह का कोई मसला है, आपके बच्चे को है खाना नहीं खाते हैं बच्चे, या उनको भूख नहीं लगती है, या दांतों को आपस में रगड़ना है, या जो है उनके मुंह से लाल आना यानी पानी टपकना रात को सोते वक्त, तो बिल्कुल बच्चे हैं बड़े हैं जिनको भी जिस किस्म का भी कोई मसला है, हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। हकीम साहब मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर कल और शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम साहब खुद मौजूद होते हैं सारा दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रखते हैं। चाहे आप टांग से हैं, चाहे वजीरिस्तान से हैं, या टांग को मजाफा से हमें सुन रहे हैं, जनाब आपकी कोई भी बीमारी है आप एक मरतबा तशरीफ लाएं अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। तो बिल्कुल जनाब, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है आप हमारे मोहतरम हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 55 23 404 पर आप मेरे साथ डायल भी कर सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं 0319 55 23 404 और 0963 511 488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं सेहत के हवाले से। तो इंशाल्लाह हकीम साहब कल भी मौजूद होंगे अपने क्लिनिक पर सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, मालिजीन भी कहते हैं कि अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप चीनी खाना छोड़ दें,
1: बिल्कुल ऐसे
0: शुगर को ना, यानी कि चीनी आप ना लें, बिल्कुल मीठी चीज से परहेज करें, तो ये क्या तल्लुक है हकीम साहब मोटापे से?
1: बात हो रही थी साइलेंट किलर की,
0: ठीक है,
1: खामोश कातिल,
0: हाँ,
1: और उसमें ये आपकी जो है चीनी भी शामिल है।
0: अच्छा चीनी भी है उसमें,
1: इसको व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं,
0: ठीक है,
1: ये एक सफेद जहर है। उसकी वजह है कि जब गन्ने की पड़ियों को डाला जाता है बेल्ट पे शुगर फैक्ट्री में, तो जाहिर है इनको केमिकल के जरिए धोया जाता है।
0: अच्छा,
1: और फिर जब दाना बनता है, जब भी कुछ ऐसे मामला हैं तो ये नुकसान है। इसकी बजाय आप गुड़ या शक्कर,
0: अच्छा यही इस्तेमाल करें,
1: ये इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर है। लेकिन गुड़ भी इस्तेमाल करें तो वो करें कि जो देसी हो, थोड़ा सा स्याही माइल पे हो, लेकिन बिल्कुल व्हाइट किस्म का गुड़ ना हो, जैसे बिल्कुल सफेद गुड़ भी अक्सर रेडियो में बिक रहा होता
0: है, बात है, हाँ।
1: वो केमिकल के जरिए,
0: ठीक है, हाँ,
1: तो वो इस्तेमाल करें, उससे परहेज करें, उसके बजाय देसी शक्कर है या गुड़ है वो ज्यादा बेहतर है, चीनी नुकसानदेह है।
0: चलिए ठीक है, तो समझ नहीं करा हकीम साहब का जो कहना है कि चीनी, क्योंकि हकीम साहब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हकीम साहब ये भी हमने सुना है कि दूध में जब हम चीनी मिक्स करते हैं तो दूध की उताकत ही खत्म हो जाती है, इसमें
1: देखें ताकत का तो उसका अपना एक है, लेकिन बहरहाल यह है कि उसमें दूध में कुछ तब्दीलियां जरूर कहते हैं आ जाएगी, और जाहिर है वो केमिकल्स हैं, उन्होंने अपने आफ्टर इफेक्ट्स वो जाहिर तो करने हैं,
0: बिल्कुल ऐसी,
1: और फिर दूध भी खालिस ना हो,
0: ठीक है,
1: दूध भी मिलावट ना हो,
0: ऐसी बात है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम, जी अस्सलामुअलैकुम,
5: हेलो
0: जी, तो प्यारे भाई आप हेलो हेलो कर रहे हैं, सो आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही है। एक और मैसेज है कि मेरे सर में दर्द होता है तो मेरी आंखों में दर्द होता है, जी हकीम साहब क्या मशवरा देंगे आप बहन को?
1: मशवरा तो यही है कि आप अपने मुआलिज से मशवरा करें इस बारे में,
0: ठीक है,
1: कि आपके पूरे सर में रहता है या हाफ सर में होता है, और इसके साथ साथ बकौल आपके कि आपकी आंखों में भी दर्द होता है, हो सकता है आंखों से पानी भी जारी हो जाता है,
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो अब चीज यह है कि देखना है कि आपके क्या मसला हो सकता है, तो या तो फिर आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, तो मेरे नंबर पर कॉल कर लें ताकि तफसील से आपसे मालूमात ली जा सके, और या फिर अगर आप आना चाहें तो आप सुबह 8 से शाम 4 बजे तक आप अलशिफा दवाखाने पे आ सकते हैं इकबाल मार्केट, ताकि उस तरीके से भी आपको बेहतर मशवरा दिया जा सके, आपसे तमाम मर्ज के बारे में पूछ के या आपकी केस हिस्ट्री लेके।
0: चलिए ठीक है हकीम साहब, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो आखिर में सेहत के हवाले से अपने सामीन को पैगाम क्या देंगे, और ये भी बताते चले कि कल आप अपने क्लिनिक पर मौजूद होंगे?
1: जरूर इंशाल्लाह, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मैं हर रोज होता हूँ, और कल भी मौजूद होगा, सिर्फ वही वक्त है जो आपके जुमे की नमाज का होता है,
0: वही आधा घंटा
1: वो तकरीबन बंद होता है, उसके अलावा दवाखाना ओपन रहता है,
0: ठीक है,
1: और मैं शाम 4 बजे तक मौजूद अपने सीट पे रहूंगा,
0: ठीक है,
1: पेशेंट जाहिर है। तो बाकी जहां तक है वो आज के टॉपिक से ही है रिलेटेड, कि साफ और सेहतमंद जिल्द के लिए सिर्फ खूबसूरती नहीं चाहिए होती,
0: ऐसी बात है,
1: बल्कि उसकी जो रीजन है उसके बाद उसकी मुनासिब देखभाल है, और जरूरत के मुताबिक किसी मुस्तरद मुआलिज से मशवरा और उसका सही इलाज,
0: बिल्कुल ऐसी बात।
1: तो आप अपनी जिल्द पे खाली ब्रांड देख के या इश्तिहार देख के आप मुख्तलिफ चीजें उस पर अप्लाई ना करें,
0: ठीक है,
1: आप अपनी जिल्द के मुताबिक पहले मशवरा कर लें, उसके बाद आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, कम अज कम आप मजीद परेशानियों से बच जाएंगे, और यही मेरा आपसे कहना है कि जरा एहतियात कीजिए।
0: बहुत मेहरबानी है कि
1: अल्लाह हाफिज़।
0: سو بالکل سامعین کرام, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جو کہ الشفا دواخانے کے روح رواں ہیں, سرپرست اعلیٰ ہیں, پورا دن اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں. صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو بالکل جناب ساسو ہم چیری دا صحت حوالے سر مسئلے بھی ساسو چیری دا سی بیماری دا چیری زیادہ دا جنو مبت کڑی بھی او ساسو چکامہ مسئلہ دا آنا دا حل شوئے. بالکل جناب ساسو دا پارا موقع دا دا ٹانک او مضافات او وزرستان خلقو دا پارا دی دا سر اپورچونٹی دا موقع دا چیت اسلام آباد او راول پینڈی دورا یو تجربہ کار حکیم ساسو خپل شہر ٹانک دا خپل خدمات ورکوی الشفا دواخانہ کی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے بحکیم صاحب سبا ملا 8 بجے نوالا دا مقام سلور بجے پورے موجود بھی او مریضان چیک اپ پوائنٹ بچاری ساتھ. بالکل جناب صحت دا پیغام سماج

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
2: रेडियो अमन 88.4।
3: नो टेंशन राइस फेस वॉश कम चीज सास मुख्तवर के खुला है साउथ सास मखड़ी नरमो मुलायम हगा जमु फैन दी ची वाई ची दमा पो मखमदे दहुना तिर सरी दी ये ददीने लवास पर गुलांदी थोरी थोरी हल्के जुड़ी शेवी दी आगे के वजह गड़े रे ज्यादा परेशान हु तो बिल्कुल जी पो मार्केट के उस अवेलेबल दी नो टेंशन राइस फेस वॉश और सरा नो टेंशन फार्मूले क्रीम कम पैसे मास्टर अच्छी सास मख बशी नरम मुलायम चमकदार और दस्तर गुलांदी थोरी थोरी हल्के पा मुकमल तो गाल रिखे हुई जी बिल्कुल दो इंतजार दस बड़े हम उस लाशे मार्केट के नो टेंशन राइस फेस वॉश, नो टेंशन फार्मूला क्रीम और नो टेंशन ब्यूटी सो प्रवाह ले और इस्तेमाल के मेन शिलाफ को रिजल्ट बताओ तो मिलावेगी नो बिल्कुल परेशान के गेमा पो मार्केट की अवेलेबल दी नो टेंशन प्रोडक्ट्स जाने रवाह ले इस्तेमाल के मैंने चीज।
4: रेडियो अमन कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम, हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन आपके मन का अमन, मन का अमन।
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کم چی ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: Your station.
7: یاله خیر دا چې بیا د سټ ازی دی اله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
8: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګی دی وی دا ته جمال خان بچی و شو کنه
7: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کی د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

सही नहीं कहा, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम है थी तो वो उनको भी बता सकते थे ना कि प्रोडक्ट के ऊपर हेल्पलाइन।